आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के

0: बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 296।

संस्कृति के खजाने से कलाकार हैं। तबला वादक पंडित निखिल घोष से बातचीत सुनेगा प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 से चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार शैलेंद्र पर, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति तेजश्री कामले की।

11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। समय 11 बजे। बारह बजकर 5 मिनट पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी, 2 बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे मन चाहे गीत कार्यक्रम, संवादक ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले, 3 बजकर 30 मिनट पर नाट्य तरंग के कार्यक्रम में सुनिए आई लव यू, इसका दूसरा भाग मूल गुजराती लेखक प्रदीप सोलंकी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण सुनंदा नायक का, निर्देशिका है तनुजा कानड़े। पिटारा में शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनिएगा, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। महावीर चक्र से सम्मानित काशीराम सिपाही की शौर्य गाथा सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत विशेष जयमाला में 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, 8 में रात 8 बजे सुनेगा हास्य नाटिका उलाहना, लेखक इंद्रचंद तिवारी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। अब फिर से बता दें ये कार्यक्रम रात 9:30 पर गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित होगा, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11 बजे सुनिए कार्यक्रम विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग है 296।

विभीषण ने श्री राम की पवित्र भक्ति मांगी और वो उन्हें प्राप्त हो गई। श्री राम की वानर सेना के सामने समस्या थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण का कहना है कि यद्यपि श्री रघुनाथ का एक

ही बाण करोड़ों समुद्रों का जल सोख सकता है, तथापि नीति कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। वो ऐसा उपाय बताएंगे जिससे रीछ और वानरों की अपरिमित सेना बिना किसी कठिनाई के सागर पार चली जाएगी।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आज आपने सुना भाग 296।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: सरिता
1: मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं प्रख्यात तबला वादक निखिल घोष से सुप्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खां की बातचीत। ये बातचीत वर्ष 1987 में संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: आज

0: बहुत ही खुशी का अवसर है कि पंडित निखिल घोष हमारे स्टूडियो में बधा रहे हैं, जो कि भारत के बहुत ही मशहूर तबला वादक हैं, जिन्होंने अच्छा सीखा और सिखाया। इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए बहुत कम है, सिर्फ मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि उन्होंने संगीत महाभारती को कायम किया है, जिससे के लोग फायदा उठा रहे हैं। नमस्कार निखिल बाबू।
1: नमस्कार हलीम साहब।
0: भाई, तबले के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सी कहावतें हैं। किसी ने कहा कि भाई हजरत अमीर खुसरो ने निकाला है, कोई कहते हैं कि खब्बे हुसैन जी जिन्होंने पखावज को काटा, और ये कहा कि तब भी बोला, तब से तबला चला रहा है। उसके अलावा अरेबिया में एक तबल नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम से भी उसको मंसूब किया जाता है कि उन्होंने निकाला है। अब सवाल यह है कि सिद्धार्थ हां धाड़ी, यहां जाके लोग रुके हुए हैं कि साहब उन्होंने पखावज को काटा, और काट के जब दो टुकड़े हुए उसको खड़ा किया तो कहा तब बोला, तो उत्पत्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: ये तबले के उत्पत्ति के बारे में जैसा आपने सही कहा, बहुत कहावत है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सारे कहावत ही है, असली में इसका उत्पत्ति यानी साइंटिफिक दृष्टि से अगर देखा जाए
0: जी हाँ,
1: तो यूं नहीं कि पखावज को दो टुकड़े करे
0: जी
1: और करके फिर बोला है।
0: हाँ।
1: दो टुकड़ा करने के बाद तो आवाज ही नहीं आएगी, ये तो सही, ये मानने की बात है।
0: हाँ।
1: और दूसरी बात
0: जी, आपका मतलब इससे है कि वो खिची अगर कट जाएंगी?
1: हाँ,
0: तो हाँ, ये मतलब है,
1: तो खिची अगर
0: कट गई तो साउंड नहीं आएगा।
1: तो
0: बिल्कुल,
1: ये तो कॉमन सेंस की बात है
0: जी।
1: और ये सारी कहावत ही है
0: जी,
1: मगर इसका खास, इसकी इब्तिदा
0: जी हाँ,
1: कोई इतिहास में अब तक मिला नहीं सही, मगर इतना अंदाजा हो चल रहा है अभी तक रिसर्च चल रहा है, तो जितना तक रिसर्च हुआ उसमें इतना ही मिला कि पुराने जमाने में एक इंस्ट्रूमेंट था जो ऐसे खड़े बजाते थे, ऐसा सीधा
0: जी हाँ,
1: जिसको कहा, वो अपने स्कल्पचर में भी है, तो उसको उद्धक कहा जाता है
0: जी।
1: तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट था,
0: शायद संबल भी कहा जाता होगा,
1: संबल भी कहते हैं, उद्धक भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं, ऐसा कुछ दो तीन नाम है, मगर ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखा है
0: जी हाँ।
1: दिखने में आता है पुराने स्कल्पचर में
0: जी हाँ जी हाँ।
1: तो शायद वहां से डेवलप होते होते ये तबला
0: इस वक्त ये
1: शेप लिया
0: जी हाँ।
1: जरूर इसमें बहुत लोगों ने दिमाग लगाया,
0: आपके ख्याल से
1: याद किया, मगर ये
0: प्राचीन काल में निखिल बाबू
1: जी,
0: कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें इसका उल्लेख हो?
1: नहीं, तबला का उल्लेख नहीं है, मगर तबला शब्द
0: जी
1: जो आपने कहा कि तबल
0: जी हाँ,
1: ये तबल जो थे और तबल जंग कहते हैं, उसके जंग में भी अभी तक बजता है
0: जी हाँ जी।
1: आपका मिडिल ईस्ट में तबल है, वो ऊंट पर रख के बजाया जाता है, उसको तबल जंग कहते हैं, जंग में बजाया जाता है
0: जी हाँ जी।
1: एक शब्द मिलते हैं तबल, और एक मिलता है साउथ इंडिया में अभी तक बज रही है तावील
0: जी,
1: और एक शब्द है तबल मतलब टेबल, जिससे जिसका मीनिंग है फ्लैट सरफेस
0: जी हाँ।
1: अब ये तीन जो सोर्स मिल रहा है इसमें से कुछ अगर मिले पता चले तो
0: ठीक है,
1: मगर अब तक नहीं मिला सही, अब तक नहीं मिला।
0: अच्छा, आपके ख्याल से कुल घराने कितने हैं, आप कितने घराने मानते हैं, क्योंकि आपने इसमें बड़ा परिश्रम किया है, आप इस काम को जानते हैं, आपके ख्याल से घराने कितने हैं?
1: के दिल्ली से पैदा इसका खास सोफिस्टिकेसी इसका खासियत वहाँ से शुरू हुआ, बाद में ये लखनऊ, फिर वहाँ से गया फरुखाबाद
0: जी,
1: और दिल्ली से एक बाइफर्केट हुआ जिसको कहते हैं अजराड़ा
0: जी हाँ।
1: ये चार खानदान खास
0: जी,
1: इस पर ज्यादा रिसर्च किया और ज्यादा कंपोजिशन ज्यादा इन लोगों से ही मिल रहा है
0: जी हाँ। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले तबला पंजाब में आया,
1: ये नहीं, मैं तो
0: इसके बारे में
1: मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ दिल्ली से ही शुरू हुआ,
0: दिल्ली से शुरू हुआ
1: वहाँ से।
0: तो इन घरानों में फर्क क्या है जी?
1: फर्क है बाज में
0: जी, यानी कुछ बोलों का फर्क,
1: बोलों का भी फर्क है, बंदिशों का फर्क है
0: जी हाँ।
1: इसका जो कॉन्सेप्ट उसमें यानी इसका जो तखायुल वो भी अलग है, एक एक का एक एक अलग है, एक एक घर खानदान का अलग है। तो ये खानदान एक एक डेवलप किया बहुत वर्षों का ऊपर से, बहुत लोग आए, कंपोज किया, बजाया, सुधारा, यूं करते करते एक एक एस्टेब्लिश हुआ बड़े बड़े खानदान, जैसा कि दिल्ली, अजराला, लखनऊ, फरुखाबाद
0: जी। अच्छा, वैसे अपने यहाँ भी जैसे बारह खड़ी हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो वैसे तबले के भी कुछ अल्फाबेट्स हैं जी?
1: हाँ,
0: जो दाएं से निकलते हैं, कुछ बाएं से निकलते हैं
1: हाँ।
0: फिर दोनों हाथ से मिलकर निकलते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जैसे ना और ता, ती और ती, ये कौन से, ये दाएं से निकलते हैं?
1: ये तबला और बायां
0: जी हाँ,
1: दोनों मिला के हम लोग तबला कहते हैं
0: जी हाँ।
1: एक साथ में है, हालांकि बायां

0: या तो डग्गा और तबला।
1: जी हाँ।
0: और डग्गा में दो ही खास बोल है,
1: गत
0: कर
1: घे
0: घे।
1: जी हाँ।
0: और यूं ही डायना में
1: जी
0: खास पांच शब्द है।
1: जी हाँ।
0: सिलेबल, एक ना, एक ता, एक तू, एक तित।
1: ना
0: ना
1: ता
0: ता
1: हाँ तू
0: तू
1: हाँ
0: तित
1: ती
0: और चित
1: और
0: थे
1: थे
0: है। मतलब जिसमें से धीरे धीरे हुआ।
1: जी हाँ।
0: ये पांच हुआ।
1: ये तो
0: पांच और दो मिलके सात हुआ। ये सात को मॉड्यूलेशन करके, वेरिएशन करके टोटल जितना इस्तेमाल हुआ होता है तबले में 22 मिलता है। जैसा आपने स्केल में है 22 श्रुति और सात स्वर, यूं ही तबले में है सात बोल खास और 22 इसका वेरिएशन। और दोनों हाथ मिला के तो कई ज्यादा
1: बहुत ज्यादा बदला दीजिए।
0: जैसा ना और घे मिला के धा हो जाता है। ना और घे दोनों मिलाया तो धा हो जाता है।
1: जी हाँ, ये धा है।
0: हाँ जी
1: जी हाँ,
0: ऐसा ही।
1: और क और के,
0: क और के उसमें ऐसा क के।
1: जी हाँ। और ये ग, क और ग एक ही है?
0: नहीं जी, ग तो घे और घे ग है।
1: अच्छा, घे और घे एक है?
0: करीब करीब है
1: जी। जैसे हम दींग कहते हैं, दींग दींग तकिट तकिट, तो ये ग जो है?
0: नहीं, ये दींग दींग ग नहीं है इसमें असल में। कहने के लिए ग चारण करते हैं, मगर दींग वो है, दींग।
1: अच्छा,
0: दींग दींग।
1: निखिल बाबू, जिस घराने के आप शागिर्द हैं, उस घराने का एक नमूना फरक्काबादी गत जरा सुनाइए।
0: जरूर।

0: निखिल बाबू, मेरी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ आना और पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: संगीत सरिता में आज आपने सुनी विविध भारती के खजाने से चुनकर लाई गई बातचीत। सुविख्यात तबला वादक निखिल घोष से बातचीत कर रहे थे प्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खान। मित्रों, आइए अब सुनते हैं निखिल घोष की बजाई हुई तबले पर

तबले पर ताल पंचम सवारी हम सुन रहे थे। वादक थे निखिल घोष। आज संगीत सरिता में हमने पहले सुनी निखिल घोष से अब्दुल हलीम जाफर खां की बातचीत और बाद में निखिल घोष का तबला वादन। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

एक गांव की कहानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी। ये गीत अभी आपने सुना नीला अंबर झूमे धरती को चूमे। आज महान गीतकार शैलेंद्र की जन्म तिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। उनके सरल संवेदनशील और जीवन से जुड़े शब्द हमारे दिलों को छूते हैं। सीधे साधे शब्दों में जीवन की सच्चाई।

0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों के है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

मुनीम जी फिल्म का ये गीत आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे हैं। गीतकार शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और एस टी बर्मन की ये धुन सुनिए।

चली कौन सी देश गुजरिया तू बन ठन के। बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत आशा भोसले और तलत महमूद के आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, जिसे शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। और इसी गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की थी, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र का लिखा एक एक गीत जैसे जिंदगी की किताब का एक एक पन्ना हो और जीवन में जीवन से ये सवाल लीजिए, सुनिए इस गीत में।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म से। संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इंसान की संवेदनाएं जब शब्दों में ढलती है तो कविता बनती है, और जब कविता आम इंसान के सुख दुख और मोहब्बत और जीवन के संघर्ष की कहानी बन जाए तो लेखनी गीतकार कविराज शैलेंद्र की है। ये बहुत ही प्यारा सा गीत वसंत बहार फिल्म से आपको अब सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं शैलेंद्र। संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का गीत। इस गीत को भी शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा
4: भारूड एक ऐसी कला है कंटेम्पररी है वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
5: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
5: जी।
4: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
5: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है ये जो दीवारें खड़ी करना है इससे क्या बनने वाला है।
5: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए इस कार्यक्रम में बहुत छोटा सा एक अंतराल लेते हैं।
6: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान।

ही तुम हो मेरे जीवन में, एक दिल सौ अफसाने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आवाजें आपने सुनी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

गीतकार शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

फिल्म बेटी बेटे का ये गीत आपने सुना, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की थी, शब्दकार थे शैलेंद्र। इसी गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

0: प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनामुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं।

0: पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल। क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। लेकिन हम अपने मन को अधिक शांत और खुश रखने की आदत जरूर विकसित कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हम हर दिन उन बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे जीवन में अच्छी हो रही हैं। खुशियां

दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं तो ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, भरपूर निद्रा और संतुलित भोजन की आदत बनाकर भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करें और सभी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का आनंद लेना सीखें। यही है खुश रहने के बहाने।

ईश्वर में आस्था और प्रार्थना से भी मन को शांति मिलती है और जीवन में खुशियाँ भी इससे मिल सकती हैं। यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो कुछ समय अपने पूजा, जप तप या ध्यान के लिए जरूर ही निकालते हैं। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे प्यार करो, खुश रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात बड़ी छोटी सी है, पर अपने आप में ही खुश रहने का बहुत सुंदर आधार भी है। जब हम इस तरह की सोच के साथ जीते हैं और साथ ही अपनी भी देखभाल करते हैं तो मन अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रखिए, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी दुखी ना हो। इसका मतलब है कठिन समय में भी उम्मीद, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते रहना।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: यशिता शर्मा, शंकर महादेवन, सुखबिंदर सिंह, मनीष कुमार और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय, फिल्म का नाम दिल धड़काने दो। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन के हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे से

इन संदेशों के पहले आपने हीर एक्सप्रेस फिल्म का गीत आपने सुना था। सिमर कौर, नवी सरान की आवाजें थी। अब सुनिए ये गाना। फिल्म का नाम है सत्यमेव जयते 2।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जारा एस खान, जैस मानक के आवाजों में गीतकार और संगीतकार थे तनिष्क बागची और जैस मानक।

0: धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जैस्मिन सैंडल्स सतिंदर सतराज की थी। गीतकार थे सतिंदर सतराज और संगीतकार शाश्वत सचदेव।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बैंड बाजा बारात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें बेनी दयाल हिमानी कपूर की थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, सलीम सुलेमान की तर्ज थे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

श्रेया घोषाल की आवाज में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, से समीर ने लिखा था चित्रलोक कार्यक्रम में। अब आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत।

अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

आज है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एंड फर्स्ट डिसअपीयरेंसेस, बलपूर्वक गाये किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन ऐसे लोगों के लिए बड़ी गंभीरतापूर्वक सोचने और लापता हुए पीड़ितों को स्मरण करने और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करने का दिवस है, जिन्हें जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया गया, जिनके बारे में परिवार आज भी सच्चाई और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये स्थिति मानवाधिकारों का सबसे क्रूर हनन है, जहां पीड़ित परिवारों को

मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पल पल संघर्ष करना पड़ता है। आज का ये दिवस हमें इसी खामोश त्रासदी के खिलाफ आवाज उठाने और खड़े होने की प्रेरणा देता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य केवल इस दुख तकलीफ को याद करना ही नहीं, बल्कि इसके प्रति सामूहिक चेतना जागृत करना है। आइए आज हम इन लापता किए गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और ऐसी घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लें।

अरिजीत सिंह की आवाज में छिछोरे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे प्रीतम का संगीत था। सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गीत आपको अब सुनवा रहे हैं एक बार और। अरिजीत सिंह की आवाज है, कुमार के बोल है रोचक कोहली का संगीत।

0: सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे। कुमार ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: कहिए सुनिए।

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

20 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेंद्र।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलोते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है, कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है, और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी। सब कुछ

लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का ये।

0: जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। शोध, स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना नाम बताए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके गाने से प्रोग्राम को शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले आज विविध भारती में कौन आया है।

0: क्या बात है, अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर?
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत, एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज
0: जी,
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहाँ जिस परिवेश में पैदा हुए वहाँ रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो। रेडियो क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों के का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने। और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
0: क्या बात है।
1: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो

0: टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
0: जी आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है, बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही, तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे, तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरी जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए, ये मेरी लाइफ का आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था, ये आवाज। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें, स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए, वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
1: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
0: जी।
1: और बाइक चलाना भी सीख लिया था
0: जी, बिल्कुल। आई थिंक हम 6th क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
1: 6th क्लास में?
0: 6th क्लास।
1: पैर वैर पहुंच रहे थे?
0: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे, वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
1: भाग जाएगी,
0: चाबी चुरा के,
1: एक्सीडेंट का डर नहीं।
0: हाँ, तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: अरे भगवान,
0: रोके कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे।
1: हाँ।
0: फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे, मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं, बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम 6th में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे, पता नहीं क्यों था। मेरे
1: गाड़ी मतलब
0: 4-व्हीलर
1: प्रॉपर वो लाल बत्ती वाली?
0: नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे, तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
1: तो पैर पहुंचने लगे।
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम 6th स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो भाई 6th से लेके 8th-9th तक, मतलब 12th तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी।

और 15 की उम्र, 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8 से ही चलाना शुरू कर दिए थे, गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बने कि बनाए कि नहीं बनाए, आ गया तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला हो

0: रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
1: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
0: एजुकेशन
1: पे फोकस है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो हम पढ़ने में अच्छे थे और हमको बचपन से ये, मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये ज़रूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर तो
0: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
1: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही हैं, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक। और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ।
0: बहुत ही रेपुटेड,
1: बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है। मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे।
0: मतलब इतनी काबिल है,
1: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे। और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
0: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है।
1: नहीं है, नहीं,
0: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं,
1: राइट,
0: तो नशा होता है संगीत का वहां।
1: करेक्ट। तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था, सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर। और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है, और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी। सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स, और तब जो आज मेरे दोस्त हैं तब वो वहाँ के जजेस थे, राहुल वैद्या और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के। आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले। तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया।
0: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
1: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था। और पता नहीं हमको बचपन से, हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा। तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे।
0: क्या

0: यारी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, क्योंकि हाँ। इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये?
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे।
1: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सुंदर

0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: शेफाली, बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा ज़माना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई
0: CSR
1: CSR हर बच्चे ने पढ़ी होगी, UPSC की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम सेवेंथ एट्थ में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब

0: आती थी, जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें। अच्छा, खूबसूरत आवाज है आपकी,
1: शुक्रिया।
0: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती है, आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
1: क्या बात है। बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में आपने?
0: पटना में आई वाज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वाज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
1: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
0: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो, ठीक है चलो माफ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे, इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे। हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं।
1: मेरे माँ बाप को 12th
0: के एग्जाम के दौरान,
1: वेरी गुड।
0: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
1: बीच में गैप्स होते हैं,
0: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी, और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहां भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे, और वहां पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुंचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहां आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहां के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं, और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था, हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोज देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था, तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था। बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था, तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था। ऑल्दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में यह था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अंग्रेजी इसको कैसे आती है, और रहन सहन पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे

0: उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए, वो स्ट्रगल मेरे लिए ज्यादा था टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं। हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सींग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो।
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं।
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला
0: इतना
1: रहा है।
0: बड़ा, और वो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वो ही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, पर वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है।
0: करेक्ट,
1: बाकी तमाम चीजें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस। हमको एक ही चीज पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरे पर्सनालिटी की जहां तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना, व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। आप जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
0: तो
1: बहुत बड़ी बात है
0: जी। तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था। वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको।
1: अच्छा,
0: अब तो आउट हो चुके हैं।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने।
0: हाँ।
1: और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट,
1: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात
0: नहीं
1: करता
0: है।
1: कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे ना, मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है, और हम करके बात करते हैं तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना, तो बड़े काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई, हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
1: ये भी माने हुए थे
0: हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा। इसलिए हम हार गए।
1: अरे बाप,
0: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है,
1: ये ख्याल कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है। जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप

0: उनके अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो, मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहाँ से लाओगी जेवर,
1: हे भगवान।
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे, वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
0: बताइए बेटी बचवा।
1: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो हैं उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिर जा

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना ताना एक समान।

0: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से मैं इसका अर्थ भी बता दूं।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिकारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, उसमें कहानी भी यही है।
0: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है
1: ये, हम

0: हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नई सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आई एम वेरी लकी।
1: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
0: है
1: जी। बिल्कुल,
0: और ये बहुत पेनफुल है। जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये
1: ख्वाब होता है।
0: ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
1: जी
0: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
1: बहुत बड़ी बात बोली है।
0: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
1: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
0: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे। जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
1: वो भी
0: वो
1: एक
0: है जीवन। हाँ। जीवन वो है, ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है। ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्क भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
1: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
0: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट।
1: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
0: पूरी
1: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया
0: और
1: था।
0: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं। बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम। रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी, पता नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी, वो बहुत कड़क थी। अपनी
1: कमजोरी दुनिया के सामने,
0: नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
1: हाँ।
0: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
1: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
0: तो
1: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है।
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था। लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी।
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा?
0: नहीं, बिल्कुल
1: एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने?
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
1: हाँ।
0: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही है। हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे। मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है। मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद, लेकिन काफी चैलेंजिंग था क्योंकि फाइनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद
0: हाँ
1: मन का बांध टूटा
0: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक
0: पहले
1: हो गई।
0: था हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है, स्टूडियो नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती है, आपने कभी देखा, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज है, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है, ये स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
1: मतलब एक अकेले कमरे में
0: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे मेरे मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे की बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं, सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि या बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
0: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया, कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी, अब तो
1: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें,
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है, तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या, गाना जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे, अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता, तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा,
0: बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं, अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार, एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है,
1: सब मुड़ के देखते
0: हैं, सब मुड़ के देखते हैं ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है।
0: जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं,
1: और वो ओझल है,
0: वो कहीं भी नहीं है। बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है
0: जी।
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका,
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान,
0: सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
1: हाँ,
0: 2-3 साल के अंतर पर
1: है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, हम उसको, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वही होती थी और स्माइल के साथ वही रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती है जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता, हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी,
0: तो
1: बहन की बात चल रही है,
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा, हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मोड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया, यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज, कोशिश करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है।

0: कहता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है, जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मूड है।
1: बॉम्बे टॉकी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे

0: और छोटी ये तुम्हारे नाम
1: और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
0: दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
8: नमस्ते सर। नमस्ते
7: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
8: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
7: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
8: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
7: कृष्णा जी आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
8: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराजे चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक ओडिशा में एक किंगडम है जिसका नाम था भोमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
7: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
8: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे हम, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
7: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
8: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
7: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयास

और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं

इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और

0: बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे, जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था, तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं उपकार फिल्म का ये गाना, महेंद्र कपूर और साथियों के स्वरों में। गुलशन बाबरा के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। सन ऑफ इंडिया फिल्म का गाना शांति माथुर और साथियों के स्वरों में, बोल हैं शकील बदायूनी के।

शहीद भगत सिंह फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हरभजन मान के आवाज में, नक्श लालपुरी के बोल थे। ये था आज का चित्रपट संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एक महिला का कारोबार आगे बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य भी आगे बढ़ता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला का आत्मविश्वास और मजबूत होता है। श्री मोदी ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण का जीवंत रूप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। उन्होंने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयासों से लोगों को निरंतर प्रेरणा मिलती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया जिन्होंने नदी घाटों सहित सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ जी यात्रा का भी उल्लेख किया जहां 400 मीट्रिक टन से अधिक कचरे को इकट्ठा कर प्रसंस्कृत किया जा चुका है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 675 हो गई है। लगातार वर्षा के बीच राहत और बचाव कार्य जारी हैं। करीब 2400 लापता लोगों में 320 से अधिक विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में रक्षा मंत्री 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के अलप्पुजा में केरल कौमुदी जयंती दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन पत्तनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख

0: मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के लिए लोकप्रिय हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। ये कुदरत फिल्म का गाना है लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवबर्मन का संगीत।

मैंने प्यार किया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। असद भोपाली के बोल थे, राम लक्ष्मण का संगीत था। आइए अब सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकी

रागों की श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। बहुत मुश्किल है होशियारी सीखना भाई, लेकिन बहुत सारे लोग पारंगत होते हैं इस गुण में। जो आज के ज़माने में सीख ले होशियारी, वो समझ लीजिए कामयाब भी है। वैसे बहुत सारे श्रोता, क्या सभी श्रोताओं ने बूझ लिया है कि आज मामला क्या है? हमने इबारत में एक लाइन लिखी भी थी कि आज तो कुछ ख़ास बात है। क्या ख़ास है, चलिए हम भी आपको बता ही देते हैं, याद ही दिला देते हैं। गीतकार शैलेंद्र की जयंती है आज, 103 बरस पूरे हुए। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं की याद को समर्पित है। आज की जो इबारत है, उस इबारत से आपको चुनने हैं शब्द और कुछ गाने जो शैलेंद्र के लिखे हुए गाने हैं। तो आप वो गाने चुनिए और साथ में ये भी बताइए कि शैलेंद्र की गीतों की कौन सी वानगी आपको प्रभावित करती है। दर्शन वाले गीत, आंचलिक गीत, मतलब जिसमें ग्रामीण परिवेश है, रोमांटिक गीत, या फिर स्त्री मन की पीड़ा जिसमें निहित है वो गीत। आप अपनी पसंद बताते रहिए और गाने लिखते रहिए, साथ में हमारी पहेलियाँ भी पूछते रहिए। आपके चुने हुए गाने हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और कुछ गाने हम जब अपनी ओर से सुनाएंगे तो देखिएगा कि वो गाने आपके दिल के करीब हैं या नहीं। एक श्रोता ने अभी अभी लिखा है, शैलेंद्र ने बेहद सरल शब्दों में जीवन के कड़वे सच को बयां किया है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी पंक्ति इंसान की मासूमियत और उसकी लाचारी को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। संगीत और गायकी शंकर जयकिशन का है, मुकेश की दर्द भरी आवाज मन को छूती है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है और ये भी हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार, तो आप ये भी हमें बता सकते हैं। एक हमारी श्रोता है, नियमित श्रोता, जिन्होंने लिखा है कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, ये केवल गीत की पंक्तियां ही नहीं है, ये तो उनकी सरलता, अपनी बात को सहज रूप में लोगों के सामने रखने का अपूर्व कौशल है। उनके गीतों में एक सीख है, कर्तव्य बोध और नैतिक मापदंड की घुट्टी, सभी कुछ क्या बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कबीर सदियों पहले कह गए थे, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, जैसी पंक्तियाँ कबीर की ही बानी की अनुगूंज है। मगर बावजूद इसके शैलेंद्र कबीर नहीं थे, बल्कि कबीर उनमें समाहित थे। क्या बात लिखिए भाई, शैलेंद्र बड़े जीवट वाले इंसान थे, सपने देखना और उन्हें सच करना उनको आता था। ये उनके रंग बिरंगे सपने ही थे जो सैकड़ों की तादाद में गीतों की शक्ल में हवाओं में आज भी गूंज रहे हैं और इस समय विविध भारती से गूंज रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं, असली नकली फिल्म से आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में संगीतकार का नाम भी पूछना है। अब गाने हमें सुझाते चलिए ताकि हम वही गाना सुनवा सकें जो आप सुनना चाहते हैं।

असली नकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। साधना और देव आनंद इस फिल्म में हीरो हीरोइन। संगीतकार का नाम भी हमारे श्रोताओं ने बताया है, शंकर जयकिशन। फिल्म थी असली नकली। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि महान गीतकार शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जिन्होंने फिल्मों में लोक संस्कृति आंचलिकता मतलब मिट्टी की सौंधी महक को बेहद सहजता से पिरोया। मूल रूप से बिहार के आरा जिले से ताल्लुक रखने के कारण ग्रामीण जीवन, लोक भाषा और आंचलिकता उनके रग रग में बसी है। शैलेंद्र ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी की शुरुआती फिल्मों के लिए भी कई ऐतिहासिक गीत लिखे, जैसे गंगा मैया तो है पियरे चढ़ेबो। जब भी भोजपुरी भाषा की बात चलती है तो ये गीत जरूर याद किया जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें तो उनके भोजपुरी गीत का रंग बहुत पसंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमें जो ग्रामीण अंचल दिखाई पड़ता है जिन गीतों में, वो हमें बहुत पसंद आता है। और अभी जो गाना हमने सुनवाया, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, इसमें भी एक स्त्री मन की बात थी। और शैलेंद्र की पूरी गीत यात्रा में हमें बहुत सारे ऐसे गाने मिल जाते हैं जिनमें उन्होंने स्त्री की बहुत ही भावनाओं को समर्पित किया, भावनाओं को उकेरा है अपने गाने में। उनके जीवन के अलग अलग मोड़ों पर दिल में उठते तूफान को गीतों में उन्होंने पिरोया है। और वो जो भाव है उनके अंतर मन के, उनके भाव उस गीत में उकेरे गए हैं और वो गीत आपके दिल में उतर जाते हैं। जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा का वो गीत याद आता है जो अक्सर आप सुना करते हैं और आज भी बहुत सारे श्रोताओं ने उस गाने का जिक्र किया है। तो अब सुनिए अनुराधा फिल्म का वही गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। लेकिन आपसे एक पहेली हम पूछ रहे हैं, पहेली वो ये है कि आप बूझिए किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है और कैसा दर्द है उस हीरोइन के चेहरे पर और उसके मन में। बहुत अनकहा दर्द है इस फिल्म में। बूझिए जरा कौन है हीरोइन और हीरो।

अनुराधा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, ये बताने की जरूरत कहाँ है, लेकिन फिर भी बता रहे, रविशंकर का संगीत था। और इसमें हमने आपसे पहली बूझी थी हीरो हीरोइन का नाम, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म अनुराधा का ये गीत बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत है, एक स्त्री के अंदर के दुख को बहुत अच्छा बयां करते हैं। इसमें रविशंकर का संगीत था और लीला नायडू बलराज साहनी इसके हीरो हीरोइन थे, और अभी भट्टाचार्य का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। हाँ, बाद में वो आते हैं और जब लीला नायडू से एक अलग स्त्री के रूप में परिवर्तित होने का आग्रह भी करते हैं और एक गाना और वो सुनने का आग्रह करते हैं जब लीला नायडू पर्दे पर गाती हैं, तो वो कौन सा गाना है, अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि 1957 में मुसाफिर और 1959 में अनाड़ी के बाद अनुराधा ऋषिकेश मुखर्जी की निर्देशित तीसरी फिल्म है। प्रेम, फिर विवाह और विवाह के बाद पति के लिए पत्नी का अपना करियर, अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग, परिणाम स्वरूप मन में उपजी उलझन और फिर फैसला इस फिल्म का थीम है। पर क्या महिला अपने फैसले को तर्क और ठोस मानसिक धरातल पर ले जाती है? इस पर एक पहेली हमने पूछी है आपसे, ज़रा आप भी सुनिए और उस पहेली का जवाब दीजिए। जब लीला नायडू अनुराधा फिल्म में एक और गाना गाती है जिसमें उसकी तड़प है और उसके मन की पीड़ा है, ज़रा वो गाना आप बता सकते हैं तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिंजरा में बंद भइल हाय राम गीत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि शैलेंद्र एक मन भावनिक और भाविक चरित्र गीतकार जिनके सरल शब्दों में दुनियादारी, इंसानियत, सच्चाई की गहरी सोच दिखाई देती है। एक गाना है करमुआ बैरी हो गए हमार या मेरे साजन है उस पार जैसे गीत भावना की गहराई दिखाई देती है। और भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं और बजाने के लिए अनुरोध किया है। भाई, हम तो आप सभी से कह रहे हैं कि आप गाने याद करते रहिए, अपनी यादों के गलियारों में जाइए, खंगालिए अपनी यादें, और गानों से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे श्रोता अभी भी लिखे जा रहे हैं, बलराज साहनी, लीला नायडू और अनुराधा, लीला नायडू, हीरो बलराज साहनी। और एक श्रोता लिख रहे हैं बरसात में हमसे मिले तुम सजन, ये वाला गाना भी सुनवाइएगा। और शैलेंद्र के गीतों से सजा जो प्रोग्राम चल रहा है ये तो बहुत ही सुरीला हो गया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम यहाँ प्रसारण आपके मुंबई से हो रहा है और मैं यहाँ नोएडा में सीधे दिल्ली से इस कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात भी सुन पा रहा हूँ लेकिन इसमें बीच में विज्ञापन आ जाता है तो नहीं सुन पाते। इसके लिए एक सलाह है कि आप मोबाइल के ऐप पर जाकर ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। चलिए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म आम्रपाली से। आपको पूछना है फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम।

आम्रपाली फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है गाना। सुनील दत्त और वैजयंती माला होती हैं। यहाँ फिर एक बार स्त्री मन की पीड़ा समाहित है इस गाने में भी। इंतज़ार है और एक दर्द है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र उस फकीर का नाम है जिसने वेल्डिंग की चिंगारियों से अपनी कलम बनाई और आम आदमी के बहते आंसुओं को गीतों में पिरो दिया। भूख, गरीबी, रेलवे वर्कशॉप की धूल में तपकर निकला ये हीरा जब राज कपूर के साथ मिला तो हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह ही बदल गई। आवारा हूं से लेकर सजन रे झूठ मत बोलो तक उन्होंने कागज पर सिर्फ शब्द नहीं उकेरे बल्कि इंसानियत का सबसे सच्चा दर्द उड़ेल दिया। वे दिल से लिखते थे इसलिए उनकी लिखी हर एक पंक्ति में आम इंसान का दिल धड़कता है। सरल, बेहद खूबसूरत और हमेशा हमेशा के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र फिल्म असली नकली में अपार प्रेम की जो स्त्री मन की पीड़ा उकेरते हैं वहीं पर तेरा मेरा प्यार अमर फिर मुझको क्यों लगता है डर ये बात लिखते हैं। वहीं पर फिल्म रात और दिन के एक गीत में शैलेंद्र जीवन की एक अजीब उलझन में फंसी एक स्त्री के भटकाव को गीत में पिरो दिया है। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल। हिंदी सिनेमा में स्त्री मन के कुछ सबसे नाजुक गीत शैलेंद्र की कलम से निकले हैं। महिला किरदारों की तड़प, उनकी तमन्नाओं, उनके ख्वाबों के नगमे, ये बात शैलेंद्र को एक विशिष्ट गीतकार बना देती है। गाइड में विवाह से परे अपने प्रेम को स्वीकार करती एक बेबाक स्त्री की पुकार है मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ, फिल्म गाइड की बात। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाइड फिल्म के गानों की बात लिखी है, वो हम आगे कहीं सुनवाएंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि इबारत में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से आपको खोजने हैं शैलेंद्र के लिखे गाने। अब ज़रा ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बूझिए और हीरोइन का नाम भी बूझिए। यहाँ पर फिर एक पुकार है।

ठंडी ठंडी सावन की फुहार, जागते रहो फिल्म का, तो यही गाना सुन लिया जाए। लेकिन एक कमेंट और तब तक हम पढ़ देते हैं। बिना शंकर जयकिशन के शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जा सकता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त हो सकेंगे। क्या बात है भाई, खुरच कर देखें। सच में जब वो गाने लिखते हैं तो लगता है कि दिल को सचमुच खुरच दिया है। चाहे वो जब बेटी के विदा होने की बात हो, चाहे स्त्री मन की पीड़ा हो, या फिर आम जिंदगी के जीवन का दर्द हो, या आम इंसान की बात हो। चलिए, बात तो चल रही थी जागते रहो फिल्म के इस गाने की, सुनिए और बताइए किसकी है आवाज, संगीतकार का नाम भी बताइए। आपको इस गाने में क्या खास बात लगती है, फटाफट बता सकते हैं तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल ऐप पर हमें पहली जो होती है प्रश्न देर से मिलता है, तो हम ऐसा करेंगे कि अगली बार तुरंत जवाब न देकर दो गाने के बाद देंगे।

जागते रहो फिल्म का गाना था और आशा भोसले की आवाज़, सलील चौधरी का संगीत। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा भोसले की रेशमी और जादुई आवाज़ ने इस गाने में जान फूंक दी है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव, मासूमियत और दर्द झलकता है जो रात के सन्नाटे और बारिश के मौसम पर पूरी तरह फिट बैठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र का अर्थ पर्वत का राजा होता है। ये शब्द संस्कृत के दो शब्द शैल और इंद्र से मिलकर बना है। इसे शक्ति, स्थिरता और विशालता का प्रतीक माना जाता है। शैलेंद्र के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं जिसे उनके द्वारा लिखे गए गीतों में हम महसूस कर सकते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, महान गीतकार जिनके गीत समाज को जीना सिखाते हैं, वैल्यू देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। महान गीतकार कविराज शैलेंद्र जी के 103वें जयंती पर शत शत नमन। और बहुत सारे गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं।

अब बारी है इस गाने की जिसके लिए सभी श्रोताओं ने लिखा है, फिल्म श्री 420। बताइए कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए, विविध भारती के फेसबुक पेज पर जल्द से लिखिए। अगला गाना कौन सा सुनवाया जाए जरा, ये भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए। अभी शैलेंद्र के लिखे बहुत सारे गाने हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आप बताइए।

0: राज कपूर और नरगिस, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी श्री 420 और बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र के गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, वे आम आदमी के दिल के धड़कन थे। उनकी कलम में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, शहर की तन्हाई का दर्द, इसलिए उनके गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं और सुनने और गहराई से समझ सकने वाले को अपनी ही कहानी सी लगते हैं। तो अब आगे बढ़ा जाए और अगला गाना सुना जाए। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है। देखिए कि आपको सुनना था या नहीं, आपके पसंद का था, जरा सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम।
1: दिल के गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
0: फिल्म का नाम आपको बूझना है।

थी रात और दिन, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ें। इस फिल्म का नाम हमने पूछा था, श्रोताओं ने जल्द से जल्द बताया, सही बताया। और एक सवाल हमारे जहन में आया है, वो ये कि शैलेंद्र पर एक गाना फिल्माया गया था जिसमें, जिस फिल्म में वो बैंजो बजाते हुए गाना गा रहे हैं, वो गाना आपको याद है या फिल्म का नाम याद है तो बताइए, या फिर गाना या फिर फिल्म का नाम, जो भी आपको याद हो बताइए। कि एक फिल्म है जिसमें वो बैंजो बजाते हैं, मतलब वो फिल्म में खुद है शैलेंद्र। तो ये श्रोता ने, हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है, तो हम उन्हीं की ओर से ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं और इसका सही जवाब आप दे पाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्वत चट्टानों के वे समूह हैं जो हमें अपने अडिगता सिखाते हैं। शैलेंद्र जी स्वभाव से ऐसे ही सहज और सजग इंसान थे, लेकिन वक्त ने उन्हें भी अंततः राज कपूर के दर पर लाकर खड़ा कर दिया और वो फिर अपनी ही मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र की कलम ने गीत नहीं लिखे बल्कि उन्होंने जीवन को सुर और भावनाओं को आवाज़ दी। उनकी लेखनी में आम आदमी की खुशियां भी है, संघर्ष भी और प्रेम की कोमल अनुभूति भी। अब एक ऐसा गाना आपको सुनवा रहे हैं जो आपको यादों के गलियारे में ले जाएगा। बताइए कौन सी याद ताज़ा हुई है गाना सुनकर, और हीरोइन का नाम ज़रा पूछिए। फिल्म बंदिनी, कौन सी याद ताज़ा हुई और कौन है हीरोइन?

बंदिनी फिल्म का ये गाना था और बहुत ही मार्मिक गाना था। नूतन होती है पर्दे पर और सभी श्रोताओं ने इसे लिखा है कि रुला देने वाला गाना है, ख़ासतौर से लड़कियां और औरतें तो ये गाना सुनकर रोती हैं। एक हमारी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हर राखी पर ये गाना हमें रुला देता है और ये गाना सुनकर स्त्रियाँ क्या पुरुष भी रोते हैं, आँखें नम हो जाती हैं। और हमने एक पहली पूछी थी फिल्म की, कौन सी वो फिल्म है जिसमें शैलेंद्र बैंजो बजाते हुए पर्दे पर नजर आते हैं, बूट पॉलिश फिल्म, चली कौन सी देस, गुजरिया तू सज धज के। लेकिन ये बोल गाने के हमारे इबारत में नहीं, इसलिए ये गाना हम आपको सुनवा नहीं रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म का ये गाना। जरा हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और साथ में याद कीजिए क्या किसी दोस्त ने आपके साथ किसी तरह की दगाबाजी की या किसी दोस्त ने आपका साथ निभाया। चाहें तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, टिप्पणियां आपकी सुरक्षित रहती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

संगम फिल्म का गाना मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, वैजंती माला, राजेंद्र कुमार और राज कपूर होते हैं इसमें हीरो हीरोइन। और सभी श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया, बहुत फास्ट दिया क्योंकि वक्त कम है और ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके हैं। और भी बहुत सारे गाने हैं जो छूट गए हैं, जिसे आप सुनना चाहते थे, हम सुनवाना चाहते थे, लेकिन वक्त की पाबंदी। बस आज का सुरीला सफ़र बस इतना है। कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दोस्तों नमस्कार। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ये बात भी हम सभी जानते हैं कि हमेशा खुश रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। लेकिन हम अपने मन को अधिक शांत और खुश रखने की आदत जरूर विकसित कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हम हर दिन उन बातों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे जीवन में अच्छी हो रही हैं।

दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं तो ये हमारे मूड को भी बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, भरपूर निद्रा और संतुलित भोजन की आदत बनाकर भी खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करें और सभी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों का आनंद लेना सीखें। यही है खुश रहने के बहाने।

ईश्वर में आस्था और प्रार्थना से भी मन को शांति मिलती है और जीवन में खुशियाँ भी इससे मिल सकती हैं। यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो प्रतिदिन वो कुछ समय अपने पूजा, जप तप या ध्यान के लिए ज़रूर ही निकालते हैं। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे प्यार करो, खुश रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। ये बात बड़ी छोटी सी है, पर अपने आप में ही खुश रहने का बहुत सुंदर आधार भी है। जब हम इस तरह की सोच के साथ जीते हैं और साथ ही अपनी भी देखभाल करते हैं तो मन अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। याद रखिए, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि हमें कभी दुखी ना हो। इसका मतलब है कठिन समय में भी उम्मीद, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करते रहना।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य

0: आधारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज़्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था? आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं, उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे काशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटे काशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि ये पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं जाने माने गीतकार शैलेंद्र को, आज उनकी जयंती है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: के
1: चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज।
2: बूट पॉलिश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार शंकर जयकिशन।
3: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
1: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
3: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आंखों में सपनों की बारात।

0: उसने कहा था। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित था। आज उनकी जयंती है, उन्हीं की याद को समर्पित था ये कार्यक्रम। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी।
1: आंखें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। पसंद करने वाले हमारे श्रोता तालुका उमरखेड़ ढाड़की से राम गाडेकर, सुनीता गाडेकर, अभिजीत कोमल और अभिषेक। इसी गाने को पसंद किया था अकोला से प्रकाश खेडकर, मीरा ताई खेडकर, आरती, संतोष, पूजा और इनका पूरा परिवार। फरमाइश आई थी इन सभी की भी बड़वाह मध्य प्रदेश से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और मुमताज मोहल्ला नौगछिया से, दूसराइल अंसारी, रहमान अंसारी, आलिया अंसारी, सीरत और इनका पूरा परिवार। आइए अब सुने अगला गीत।

नंदा किशन कुमरे, निकिता गणेश कुमरे और इनके परिजन सतीश अनेजा, विमला अनेजा, शेफाली शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस चंडीगढ़ से और खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना, शेख, मूसा, राजकुमार और इनका पूरा परिवार।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना। संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। फिल्म थी पड़ोसन। पसंद करने वाले श्रोता, हमारी ये यवतमाल विदर्भ से

दादा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। कुलवंत जानी के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति नाचानी की। परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, शानू, अभय, मन्नत, पुष्पा, सुदेशना और निम्मो की फरमाइश थी।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, चित्रगुप्त ने धुन बनाई थी और पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू और इनके अन्य साथी। ग्राम लुहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव की फरमाइश थी।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। फरमाइश थी आप सभी की अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद ए कमल, नफीसा परवान और जाहिदा की फरमाइश थी। इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया और इनके परिजन, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, ईशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनल वली और अफजल मलिक। और इसी गाने की फरमाइश आई थी कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना और इनके मित्रगण। गजानन लिखार, मनोज लिखार, संजना लिखार ने फरमाइश भेजी थी महाराष्ट्र सामंगी से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो सुनते हैं नाटक आई लव यू दूसरा और अंतिम भाग।
1: यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
2: All right, as you wish.
3: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
2: क्या है?
3: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
2: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
3: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
1: ये आपने किसे समझ लिया?
3: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
2: मगर आप हैं कौन?
3: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
2: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
3: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं।
1: अब क्या चाहते हैं?
3: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
2: स्याही खत्म हो गई?
3: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
1: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
3: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
2: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
3: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
1: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
2: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
3: मैं आगे बढ़ूं?
1: ओह श्योर।
3: यू सी, अमर के पास सब कुछ है लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता।
2: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
3: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
1: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
3: देखने में नहीं लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
1: फिर?
3: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
3: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
3: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
3: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा?
3: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
3: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
3: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
3: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
3: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
3: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
3: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
3: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
3: यानी कि मैं ही अमर हूं।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
1: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, that's why I love you, darling। तुम भी कहो ना I love you। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना,
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना I love you, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are matured।
2: Okay, okay, ये तो just मेरे मन की शांति के लिए।
1: Please, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: नहीं।
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
2: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you।
2: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
2: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव लव लव, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
4: लीना लीना ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
2: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहां से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारी बेकार की मांग की।
2: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
2: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
2: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
5: दोनों पागल हैं।
4: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। कहाँ जा रही हो भाई?
5: देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं?
4: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
5: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
4: ये साड़ी कब खरीदी?
5: कैसी लगती है?
4: समझ में नहीं आता है कि तुम साड़ी से जच रही हो या साड़ी तुमसे जच रही है।
5: अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो?
4: रेखा, इन दोनों जवान लोगों को तुमने देखा? छोटी छोटी बात में नाना करते हैं। हम दोनों भले ही चाहे जितना लड़ें झगड़ें, लेकिन एक दूसरे की बात तो रखते ही हैं। जबकि आज की ये पीढ़ी एक छोटी सी बात के लिए अपना सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें किसका दोष है? समाज का, समय का या विदेशी संस्कृति का? आज भारत में
5: बस बस बस, एक मिनट, ये टेबल लो।
4: टेबल किस लिए?
5: इस पर चढ़कर फिर भाषण दो, चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा।
4: गुड जोक। तुम जब इस तरह से अकलमंदी की बात बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
5: अरे मैं तो हमेशा अकलमंदी की ही बात बोलती हूँ, मगर तुम अकलमंदी से सुनते नहीं हो।
4: आओ ना, मेरा स्वभाव जरा अजीब है, लेकिन तुम मुझे यकीन है कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहती हो।
5: अब छोड़ो भी ये सब, चाचा जी आते होंगे।
4: नहीं नहीं, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो।
5: क्या?
4: मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो I love you।
5: हे भगवान, इनके सर पे भूत कैसे सवार हो गया? छोड़ो, मैं इस तरह का उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली।
4: पति से मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में उल्टा सीधा क्या है?
5: उल्टा सीधा यही है कि पति जबरदस्ती ये कहने पर मजबूर कर रहा है।
4: मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? हैं? अरे मूर्ख, मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ।
5: इतने जोर से ना कहो।
4: ऑल राइट, हाथ जोड़कर कहता हूँ।
5: हाथ अपने चाचा जी के सामने जोड़ना। तुम तो उन्हें फोन करने वाले थे ना?
4: बात मत बदलो, तुम कहती हो कि नहीं।
5: छोड़ो मुझे बहुत से काम है।
4: चुप रहो, मैं कहता हूँ। मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। मेरी खातिर बोलो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
5: कल तुम्हें मुझे कहोगे कुएं में कूद जा तो क्या मैं कूद जाऊंगी?
4: मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
5: तो कितने हो?
4: इसमें कुएं में पड़ने की बात कहाँ से आ गई?
5: बात नहीं, लेकिन मैं तो हूँ ही कुएं में पड़ी हुई। तुम्हारे जैसे सिद्धि मतलब ही पति के साथ शादी करने का, गृहस्थी चलाने का मतलब ही यही है कि कुएं पड़े रहना हो।
4: जो मुंह में आए वो बकती जाती हो। एक ऐसा थप्पड़ देता हूँ मैं।
5: मारो, मार डालो मुझे। मुझे मालूम है तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं।
4: लेकिन जिंदगी में मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है।
5: मैं चाहती हूँ, कई दिनों से तुम मुझे मारने की बात बहाना ढूंढ रहे हो। मारो मुझे।
4: रेखा,
5: हे भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि तुम मुझे उठा लो।
4: मर गया, डोर मर गया। अब तो जरूर चाचा जी होंगे। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं ही पोछ लेता हूँ। आइए चाचा जी। कैसी हैं चाची जी?
6: अच्छी हूँ, तुम दोनों कैसे हो?
7: अरे मनोहर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी?
5: मैं,
7: कौन रो रहा है? अरे रेखा बेटी, क्या हुआ?
4: कुछ नहीं चाचा जी, वो जरा दिल भराया इसका बस।
6: हमें देखकर?
4: हाँ,
6: हमें देखकर दिल क्यों भराया?
7: मनोहर सच बताओ, क्या बात है?
4: अब कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे बिना वजह
6: किसी को रोना नहीं आता, समझे?
7: इस सिमाए तुम्हारी चाची के।
6: क्या बिना वजह रोती हूँ मैं?
7: रोने के बाद तुम कुछ न कुछ वजह ढूंढ लेती हो, इसलिए बिना वजह रोने जैसा नहीं लगता। मनोहर बताओ बात क्या है?
4: अब कुछ नहीं। वो भाई रेखा, पानी वानी भी लाओगी? नहीं जाओ।
5: अच्छा हो गया आप लोग आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालते।
6: मनोहर बहू को क्या शिकायत है?
4: कुछ नहीं, वो जरा जिद्दी है। बस मैंने उसे चार शब्द कहने के लिए कहा तो उसने बस ये जंग छेड़ दी।
7: ऐसा तुमने क्या कहने के लिए कहा?
4: मैं तुम्हें चाहती हूँ।
6: गधा कहीं का, इस उम्र में शर्म नहीं आती?
7: इससे पहले तुमने उसे डांटा था?
4: नहीं, गलत मत समझिए। थोड़ी देर पहले मैंने रेखा से कहा था कि एक बार कहो आई लव यू, मैं तुम्हें चाहती हूँ।
7: तुम पागल वागल तो नहीं हुए ये कहने की कोई वजह?
5: लीजिए पानी।
4: इसकी बहन की बेटी लीना।
7: कौन? प्राण जीवन की बेटी?
4: लीना के नाम के आगे प्राण जीवन नाम ही लगता है, यानी कि हाँ वही होगा।
7: क्या कहा तुमने?
4: मैंने आपके सवाल का जवाब दिया चाचा जी।
6: ये लीना वाली बात क्या है?
4: लीना और उसके होने वाले पति में इसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो लोग साथ वाले कमरे में बैठे हैं।
7: अब भी लग रहे हैं क्या?
4: कमरा खुलने से मालूम होगा। मैं खोल कर देखाऊं?
6: नहीं, रहने दो, इतना बड़ा हो गया अभी तक मालूम नहीं। जवान लड़के लड़की बैठे हों तो उनको बैठे रहना देना चाहिए।
7: संक्षेप में तुम दोनों इन दोनों से मैं तुम्हें चाहती हूँ कहने की मांग कर रहे हो?
4: हाँ, हमें संबोधित करके कहे ये जरूरी नहीं, बस सिर्फ कहे तो काफी है।
6: अरे पागलो, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने?
4: हाँ? कमाल है चाची जी, ये तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक। कमाल है,
7: हंसी मजाक करते करते दुखी हो गए ना? तुम्हारे इस नए जमाने से तौबा भाई। चलो रेखा बेटी,
5: अच्छी
7: सब कुछ भूल जाओ और फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय बनाकर लाओ।
4: हाँ, मेरे लिए भी ना भूलना है।
6: कितनी सुशील सयानी बहू है मेरी, इसे इस तरह क्यों परेशान करते हो?
4: दो दिन साथ रहकर देखो तो मालूम पड़ेगा।
7: ये बात तो सच कही।
6: क्यों, तुम क्यों दखल देते हो बीच में?
7: अरे मनोहर, खूब याद आया भाई, हर बार की तरह इस बार भी थोड़े गुलाब जामुन और रसमलाई तो ले आना। ये लो पैसे लो।
4: नहीं नहीं नहीं चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं?
6: पैसे नहीं लेते हो तो हमें नहीं चाहिए।
4: लेकिन
6: अभी कुछ मत कहो।
4: आप भी चाची। अरे चाची की चप्पल, तू ही आ जा मेरे।
6: ये मनोहर को आज क्या हो गया? तुमने देखा दरवाजे के पास रहकर कैसी कैसी हरकतें कर रहा था?
7: अरे भाई, छुट्टी के मूड में होगा।
6: पागल है। मैं कहती हूँ कि आखिर ऐसा बुलवाने की क्या जरूरत थी?
7: ना समझी है और क्या। नहीं तो मैं तुम्हें चाहती हूँ ये कहने में दोनों औरतों का क्या जाता था?
6: लेकिन इससे ये बुलवा कर दोनों आदमी को क्या मिलने वाला था?
7: अरे जवान है, एक कभी कभी मजाक भी सूझता है, छोटी सी बातों का बतंगड़ बन जाता है। अगर बात बढ़ानी ना हो तो इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम क्या कहती हो?
6: तुम मेरी राय कब से मांगने लगे?
7: नहीं नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कहो मैं तुम्हें चाहती हूं तो तुम एक बार नहीं 100 बार बोलोगी।
6: लेकिन तुम ऐसा कहोगे ही नहीं।
7: लेकिन मान लो कि मैं तुमसे कहूं तो मुझे यकीन है कि तुम जरूर कहोगी।
6: क्यों, तुम इतने मूर्ख हो क्या?
7: और ना कहो, इतनी बेवकूफी भी तुम नहीं कर सकती। आ, आ, आ, आ, आ।
8: नमस्ते चाचा जी।
7: आओ बेटा, आओ लीना, बैठो बैठो।
8: हाँ मैं चाय लेकर आती हूँ।
7: रुको, मनोहर को मैंने बाहर भेजा है, उसे आने दो, तुम भी बैठो। ये तुम्हारी भांजी लीना है ना?
8: जी, और ये वीरेंद्र, लीना का होने वाला कोई नहीं।
7: अरे तुम लोग सचमुच नादान हो, मनोहर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हारी चाची से कहूं कि रेल की पटरी पर जाकर सो जाओ तो एक मिनट में सो जाएगी।
8: अगर गाड़ी आने वाली हो तो भी?
7: हाँ हाँ तो भी, इसमें कोई शक नहीं।
8: आई डोंट बिलीव।
7: रमा चलो इन सबको सबक सिखा दो, एक बार सबके सामने मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
6: हाय हाय, कुछ लाज शर्म है, सबके सामने ये कैसे कहूँ?
7: क्योंकि क्योंकि ये मेरा हुक्म है।
6: अरे तुम्हें तो पागलों की तरह हुक्म देने की आदत पड़ गई है, लेकिन तुम्हारा हुक्म मानता कौन है?
7: तुम सबके सामने मेरे हुक्म का अनादर करती हो।
6: सबके सामने तुम खुद ही अपनी आबरू की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो मैं क्या करूँ?
7: तुम पागल हो, हमें तो बस सबको दिखाना है।
6: मैं कोई लोगों के सामने दिखाने के लिए भैंस नहीं हूँ।
7: तुम नहीं, तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, इसमें तुम्हें दिखाने की क्या बात है?
6: चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए हैं।
7: वो तो तुमसे शादी होते ही पड़ गए थे।
6: 100 की सीधी बात एक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, समझे?
7: अरे तू तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा।
6: खबरदार जो मेरे बाप को बीच में लाए।
7: बीच में नहीं, पीछे पीछे घुमा करता था अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए, कहीं चला नहीं तो मेरे गले में बांध दिया।
6: तुम क्या अंधे थे?
7: अंधा नहीं, उदार था। उदार नहीं, उधार थे।
6: मेरे आने के बाद ही घर में 2 वक्त का खाना पकने लगा, भूल गए क्या?
9: चाची जी प्लीज।
6: नहीं नहीं, पुरुषों से हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमसे जो चाहे कहलवा लो।
7: पागल है, कुछ समझती ही नहीं।
6: जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती कर दूंगी।
8: चाची जी आप जरा शांत हो जाइए,
6: अंदर चलो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखी जाती।
7: सुनो सुनो सुनो रामा, देखो देखो, एक बात याद रखना रामा, एक बात याद रखना।
10: लीना
8: क्या है?
10: तुम्हारे कारण ही घर में आग लगी है ये?
8: मैंने तो केवल लकड़ियां लाई थी, आग तो तुम्ही ने सुलगाई।
4: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
8: अंदर है।
4: क्यों?
10: हम जैसा ही हाल है।
4: हैं? क्या बात करते हो, क्या हम जैसे ही ठन गई है?
10: हाँ।
4: वाह मजा आ गया।
8: आपको इसमें क्या मजा आया?
4: अरे भाई कौन कितने पानी में है ये पता चल गया ना?
8: मौसा जी सचमुच जोकर है।
10: तुम्हारे मौसा जी हैं?
8: मुझे मौसा जी कतई पसंद नहीं।
10: पसंद? ओ ओ गॉड, मुझे आज एक फोन करना था।

0: हेलो शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ वाइट, ऑफ वाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना कल, यानी कि कल डिलीवरी मिलेगी। लीना अपनी कार की डिलीवरी मिलने वाली है कल।
1: रियली? ऑफ वाइट कलर की है ना?
0: एक मिनट, हेलो ऑफ व्हाइट कलर ही मिलेगा ना? हाँ
1: हाँ हाउ नाइस।
0: अच्छा अच्छा कल कब आऊं? नीना 4 बजे तुम फ्री हो ना?
1: ओह यस आई एम फ्री।
0: हाँ हेलो हम लोग 4 बजे आते हैं, सब तैयार रखिएगा। ओके ओके लीना एट लास्ट वी गॉट इट,
1: थैंक गॉड। चलो पूरे दिन में एक तो अच्छी खबर मिली। इस मैं तुम्हें चाहती हूँ मामले में तो पूरा दिन बर्बाद हुआ था।
0: अरे कह दिया
1: क्या?
0: आखिर लीना ने कह ही दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: आई लव यू वीरेन, आई लव यू।
0: अरे मौसा जी हमारा मामला तो निपट गया।
2: देखो देखो इन लोगों का निपट गया।
1: मूर्ख है लीना। अरे मौसी तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, उल्टा तुमने मुझे शाबाशी देनी चाहिए, उसके बदले तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो।
0: चलो मौसी तुम भी कह डालो।
1: कह दो ना, चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा।
0: और क्या?
3: मुझे किसी को अच्छा बच्चा लगवाने की जरूरत नहीं है, और चाची जी तो मेरे ही पक्ष में है,
4: वो तो मैं हूँ ही। इनकी समस्या भी सुलझ गई।
3: अरे इस पगड़ी ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: चाची जी चाचा जी जल्दी आए। अरे भाई रेखा ने कह दिया मैं तुम्हें चाहती हूँ।
3: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
2: डियर डियर एक बार नहीं दो बार।
5: क्या हुआ मनोहर, क्या बात है?
2: चाचा जी 2 बार मैं जीत गया
0: और मैं भी 2 बार जीत गया।
2: चाची चाची हमारा निपट गया। अब तो जीत छोड़ दो, एक बार मेरे चाचा जी की ओर तो देखो, बेचारे कितने नर्वस हो गए।
4: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे, इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी।
1: बिल्कुल,
4: तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे जनरल तो जनरल ही सही, रमा तुम भी एक बार कह ही डालो।
4: तुम्हारी इन मूर्खता भरी बातों में मैं आने वाली नहीं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
1: चाचा जी,
5: मर गया चाचा।
1: अरे ये क्या कह रहे हैं?
5: सारी दुनिया मेरी इज्जत मेरा सम्मान करती है, और ये 2 कौड़ी की औरत इन बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाहती है।
4: तुम कुछ भी कह लो, मैं टस से मस होने वाली नहीं।
1: क्या हो गया? क्या हो गया इनको? क्या हो गया? क्या हो गया? देखो तो मनोहर, देखो तो क्या? क्या हो गया?
5: रमा रमा
4: मनोहर मनोहर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
5: डॉक्टर रहने दो।
4: क्या हो गया?
5: एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार मेरे लिए कह दो।
4: क्या कह रहे?
5: रमा रमा सिर्फ एक बार मेरे लिए कह दो।
4: देखो मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। मुझसे भूल हो गई।
5: एक बार कह तो।
4: मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ।
5: खाओ मेरी कसम
4: तुम्हारी। अच्छा इसका मतलब तुमने
5: नाटक किया था।
1: चाचा जी आप भी।
5: बच्चों इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
6: ये जलेबी और बूंदी के लड्डू कहाँ रखूं?
1: अरे यार,
2: अरे भाई ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला है, वे खोल दो ये पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांटकर पार्टी बना लो।

0: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ये लो रुमाल से आंसू पोछ डालो। अच्छा मैं पोछ लेता। आइए चाचा जी।
0: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: चलो सोफे से नीचे उतरो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: डियर एक बार नहीं।
0: रेखा कामिनी कौशल।
3: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
1: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
3: अंदर है।
1: क्यों?
0: लीना भारती कानड़े।
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था। देखिए, हाँ व्हाइट, ऑफ व्हाइट कलर। लीना ने आपसे कहा था ना?
0: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह।
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
0: जगमोहन राजदीप।
6: जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था। जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे। इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे
0: रमा लक्ष्मी शर्मा।
7: आना चाहिए।
0: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानडे। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
8: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
9: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
8: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
9: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
8: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
9: जी।
8: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
9: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
8: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
9: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर शाम के 4 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है। लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है, जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम,
निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। यह बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट ले। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीजों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्र को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे जी। विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पिटारा। पिटारा के अंतर्गत आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के।

0: पुल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजुअली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पुल देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है
1: जी।
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी आधा या गजब तीचे आधा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था
1: जी जी।
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम

0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ,
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया। और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह,
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज हैं। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो NSD रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है। मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक
0: बहुत
1: रही
0: ज्यादा था? मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस आते थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो, तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर एक साल के बाद एक झुंझवारिया से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया, और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर 2-4-5-10 नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले नहीं यार, उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बात है, यहां एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी,
1: वो देहाती लोग थे वहां के
0: जी। जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम, मुड़ियेटू और पड़ेनी। मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेट जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड, जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली, डायलेक्ट होती थी मलयालम की। तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी। मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
0: जी।
1: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम, और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो जी, ऐसा जी। लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी, जो हमारी दुभाषी जो थी, वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द, या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी 2-3 वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के, तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की, और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी, वो हमारे साथ रहती थी, वो 2 रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार 4-4, 5-5, 10-10 सेंटेंस। तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ, जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है, या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है, उसके गांव में तैयम देखने गए थे। और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया, और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे। तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां, एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में, टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई, कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतेले बर्तन समेटने लगा, तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैननोर जाने वाली बस कहाँ है? तो उसने कहा वो पोई,
0: मतलब गई
1: वो चली गई अभी। अब वो लगभग 1 फरलांग दूर चली गई थी, तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। मैं इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से। तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके? रात को 9:30 बज गए, और गांव में, देहात में 9-9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है। अब जाएं तो कहाँ गए? तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, 2-2 टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था। केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर। तो चलो जहां, जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते। वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात कि खेती से पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए, तब 11:30 बज रहे थे।
0: और चावल के खेत तो गीले,
1: चावल के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
0: वाह।
1: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
0: जी जी।
1: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
0: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
1: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
0: जी।
1: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव, तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई
0: बस पोई। हाँ।
1: तो बोली अब क्या करोगे, तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाओ। तो मैंने कहा ये कि अगर आपको मदद करनी है हमको तो ये काम करो, 1 घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने 1.5 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था NSD वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा, मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई। क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितने भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर में लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: तब 4:30-5 बजने वाले थे तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है, यहाँ सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया
0: रेत
1: के ऊपर। पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
0: वाह वाह।
1: और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना, इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची। और हम ऐसा कैसा ये दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए बस में जाए जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
0: अच्छा।
1: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
0: वाह वाह।
1: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
0: सुंदर बात।
1: और ये ऐसा अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
0: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
1: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
0: जी बिल्कुल।
1: यहां तक आना और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
0: जी,
1: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं।
0: जी,
1: यही बात है। वो
0: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: गया।
1: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहाँ आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहाँ आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
2: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ। तो मैं यहाँ जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
1: जी।
2: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
1: जी।
2: तो वो एग्जीबिशन रतन थियम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
1: जी।
2: तो उन्होंने डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
1: वाह वाह,
2: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है। तो खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं जब उन्होंने बुलाया, तो उस समय वो सारे एल्बम तो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
2: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए, तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी, यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई अमन केंद्र है और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
2: दुबले पतले वामन केंद्र बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
2: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
2: थोड़ी बहुत
1: जी।
2: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
2: तो कुछ लोगों ने ये तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
2: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है।
1: ओके,
2: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई। और 1.5 घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहाँ केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा छिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था। तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का। और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिव

0: एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था।
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो। तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो। और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
0: क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी। तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूँ, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, डेढ़ दो घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी तो मैं तो चला गया कहां, रविन्द्र नाट्य मंदिर। और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो एक दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
1: ओके।
0: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब। तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे। अरे मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है। मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान। हाँ, अपना नहीं कि दूसरों का।
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती वूर्ति उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये। रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहाँ बर्थडे होता है उसको कहाँ मालूम है। हाँ, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया। वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता।
1: लो,
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासराबर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता, ज्योग्राफी कब कितना कहां ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इंपल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इंपल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी।
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी, जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी?
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो।
1: अरे भगवान,
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी।
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माता जी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगले जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी।
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला। तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है।
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी। और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो। तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे।
1: अरे कैसे।
0: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूँ।

0: हो, और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आपके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूँ सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया। पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, रबालेर वहां रहती थी, और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा साल हो गया, दो साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों,
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, और बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कई शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहां ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में, उस गली में, ये यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आया ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो आप करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया। इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणाएं थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे। कोई 2 मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।
0: माता पिताजी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन, उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह वाह।
0: 42 रुपीज
1: जी जी,
0: वो रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
0: और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मुपलवाज की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मुपलवार जी ने वहां पर।

0: बहुत बढ़िया, ज्वार की रोटी, बेसन पिठलं, झुनका, छेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ,
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी, पिताजी, चाचा जी, बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो,
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारी एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब, ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजना चाहते हैं। कुछ ही पलों में होगा मराठी में समाचार, जिसे हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम छाया गीत।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत।

सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। तुम मेरे सामने हो खिलते फूलों की तरह, तुम्हारी मुस्कुराहटों से रोशन है ये जहां, तुम्हारे नैनों की चमक जैसे सितारे हैं, तुम्हारे होठों की हंसी जैसे बहारें हैं।

तुम्हारे बिना ये दिल वीरान हो गया, तुम्हारी यादों का साया मेरा सुकून हो गया, तुम्हारे बिना ये रास्ते अनजाने हैं, तुम्हारे बिना ये दिल बंजारा हो गया।

चांदनी रात तुम्हारे बिना अपनी चमक खो देती है। साथ बिताए लम्हे उन लम्हों की यादें दिल में मीठी खुशबू घोल देती है। तुम्हारी मुस्कान शहद की बूंद, मेरी नजरों में हो तुम समाए, इन नजरों के अलावा हर नजर से तुम्हें खुदा बचाए।

तुम्हारे चेहरे पे छाई जुल्फें दिल को छू गईं, तबस्सुम ने जादू कर दिया, तुम्हारी हंसी की खनक एक धुन बन गई, ख्यालों में जो चेहरा था तुम्हारे दीदार से ख्याल एक गीत बन गया।

0: एक नए अफसाने को दिल ढूंढ रहा है, दिल की राहों में एक नया सपना है, हर पल में छुपी एक कहानी है।
1: जाने क्या ढूंढते रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है।

जिंदगी से मुलाकात एक पल की बात, दिल से दिल की बात जिंदगी भर का साथ। दिल की गहराइयों में एक नई रोशनी छाई है, तुमसे रात मुलाकात क्या हुई, जिंदगी मुस्कुराई है।

0: एक बात कहूं, चेहरा रूप रंग हर अदा है रूखी रूखी, जब तक ना हो इसमें इश्क की चमक, रहेगी जिंदगी सूखी सूखी। गुस्ताखी माफ।
1: चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म ओमकारा से, आवाज़ रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ राघव चैतन्य की थी। गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म अक्सर से, आवाज़ हिमेश रेशमिया की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का ही था। थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म वेदा से। आवाज़ें प्राजक्ता शुक्रे, हिमानी कपूर और मनन भारद्वाज की थी। गीत के बोल मनन भारद्वाज के और संगीत भी इनका ही था।
1: ये है

0: विविध भारती, विविध भारती देश का रेडियो।
1: ओ मेरे पिया दे रंग किया है वहां से पहली।
2: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क।
0: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
4: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
2: विविध भारती पर हर पल है खास।
0: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार।
2: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
5: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
0: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म दिल से, आवाज़ें सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की थी, गीत के बोल गुलजार के और संगीत एआर रहमान का।
1: ये है विविध भारती, विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंग किया है महा से पहली,
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: कविता सेठ की थी। गीत के बोल पारंपरिक और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही था।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे खाब 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लज्जा से, आवाज़ अलका याग्निक और साथियों की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत अनु मलिक का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब जानते हैं झरोका के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन 6:35 पर। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इसमें आप सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से, कलाकार तबला वादक पंडित निखिल घोष से बातचीत, प्रस्तुति छाया गांगुली की। विशेष जयमाला आप सुन सकेंगे शाम को 7 बजे। इसमें आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र काशीराम सिपाही को। कार्यक्रम साज और आवाज़ आपको सुनवाएंगे 7:45 पर। माओ थारगन पर होंगे मिलन गुप्ता।

हवा महल कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8 बजे। इसमें आप सुनेंगे हास्य नाटिका उलाहना, लेखक इंद्रचंद तिवारी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:15 पर। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार आप सुनेंगे रात 9:30 पर। गीतकार शैलेंद्र पर आधारित कार्यक्रम, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। छाया गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 बजे, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। कार्यक्रम ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। विविधा कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे झरोका के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए आप जानते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन बार। श्री रामचरित मानस का 297वां भाग आप सुनेंगे 6:35 पर। सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता श्रृंखला विविध भारती के खजाने से कलाकार गायक दिलशाद खान से बातचीत प्रस्तुति छाया गांगुली की। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे 7:00। हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। कार्यक्रम त्रिवेणी आप सुनेंगे 8:15 पर। आलेख एवं स्वर सविता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन सकेंगे 8:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाएंगे 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे अभिनेता के एन सिंह को, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनेंगे 11:00। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 12:05 पर। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे 1:00। कार्यक्रम त्रिवेणी होगा 2:00। आलेख एवं स्वर सविता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4:00 पिटारा में आप सुनेंगे सेहतनामा, बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। कार्यक्रम छाया गीत सुनवाएंगे 5:00। तराने नए पुराने आप सुन सकेंगे 5:30 पर। संध्या रंजन कार्यक्रम होगा 6:35 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला विविध भारती के खजाने से कलाकार गायक दिलशाद खान से बातचीत प्रस्तुति छाया गांगुली की। जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:00। एक ही फिल्म से, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:45 पर। फिल्म का नाम आशिकी। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, इसमें आप सुनेंगे प्रहसन तू तू मैं, लेखन अशरफ अली सिद्दीकी, निर्देशन मुख्तार अहमद का। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:15 पर। कार्यक्रम आपके लिए आप सुनेंगे 9:00। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार, अभिनेता के एम सिंह, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10:00 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोका के अंतर्गत कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म श्री हनुमान चालीसा से, आवाज़ हरिओम शरण की थी। गीत के बोल पारंपरिक और संगीत हरिओम शरण का है। आइए सुनते हैं अब ये भजन।

0: हैं प्रख्यात तबला वादक निखिल घोष से सुप्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खान की बातचीत। ये बातचीत वर्ष 1987 में संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
1: आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि पंडित निखिल घोष हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, जो कि भारत के बहुत ही मशहूर तबला वादक हैं, जिन्होंने अच्छा सीखा और सिखाया। इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए बहुत कम है, सिर्फ मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि उन्होंने संगीत महाभारती को कायम किया है, जिससे के लोग फायदा उठा रहे हैं। नमस्कार निखिल बाबू।
2: नमस्कार हलीम साहब।
1: वही तबले के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सी कहावतें हैं। किसी ने कहा कि भाई हजरत अमीर खुसरो ने निकाला है, कोई कहते हैं कि खब्बे हुसैन जी जिन्होंने पखावज को काटा, और ये कहा कि तब भी बोला, तब से तबला चला रहा है। उसके अलावा अरेबिया में एक तबल नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम से भी उसको मंसूब किया जाता है कि उन्होंने निकाला है। अब सवाल ये है कि सिद्धार्थ हां धाड़ी यहाँ जाके लोग रुके हुए हैं कि साहब उन्होंने पखावज को काटा और काट के जब दो टुकड़े हुए उसको खड़ा किया तो कहा तब बोला, तो उत्पत्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: ये तबले के उत्पत्ति के बारे में जैसा आपने सही कहा, बहुत कहावत है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सारे कहावत ही है, असली में इसका उत्पत्ति यानी साइंटिफिक दृष्टि से अगर देखा जाए
1: जी हाँ,
2: तो यूं नहीं कि पखावज को दो टुकड़े करे
1: जी
2: और करके फिर बोला है।
1: हाँ।
2: दो टुकड़ा करने के बाद तो आवाज ही नहीं आएगी, ये तो सही, ये मानने की बात है।
1: हाँ।
2: और दूसरी बात
1: जी, आपका मतलब इससे है कि वो खिची अगर कट जाएंगी?
2: हाँ,
1: तो हाँ ये मतलब है,
2: तो खिची अगर
1: कट गई तो साउंड नहीं आएगा।
2: ये तो कॉमन सेंस की बात है
1: जी,
2: और ये सारी कहावत ही है
1: जी,
2: मगर इसका खास इसकी इब्तिदा
1: जी हाँ
2: कोई इतिहास में अब तक मिला नहीं सही, मगर इतना अंदाजा हो चल रहा है अभी तक रिसर्च चल रहा है, तो जितना तक रिसर्च हुआ उसमें इतना ही मिला कि पुराने जमाने में एक इंस्ट्रूमेंट था जो ऐसे खड़े बजाते थे, ऐसा सीधा
1: जी हाँ,
2: जिसको कहा वो अपने स्कल्पचर में भी है, तो उसको उद्धक कहा जाता है
1: जी,
2: तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट था,
1: शायद संबल भी कहा जाता होगा,
2: संबल भी कहते हैं, उद्धक भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं, ऐसा कुछ दो तीन नाम है, मगर ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखा है
1: जी हाँ,
2: दिखने में आता है पुराने स्कल्पचर में
1: जी हाँ जी हाँ,
2: तो शायद वहां से डेवलप होते होते ये तबला
1: इस वक्त ये शेप
2: लिया
1: जी हाँ,
2: जरूर इसमें बहुत लोगों ने दिमाग लगाया
1: आपके ख्याल से
2: किया, मगर ये
1: काल में निखिल बाबू
2: जी
1: कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें इसका उल्लेख हो?
2: नहीं, तबला का उल्लेख नहीं है, मगर तबला शब्द
1: जी
2: जो आपने कहा
1: हाँ,
2: तबल
1: तबल जी हाँ,
2: ये तबल जो थे और तबल जंग कहते हैं उसके जंग में भी अभी तक बजता है
1: जी हाँ जी,
2: आपका मिडिल ईस्ट में तबल है वो ऊंट पर रख के बजाया जाता है, उसको तबल जंग कहते हैं, जंग में बजाया जाता है
1: जी हाँ जी,
2: एक शब्द मिलता है तबल, और एक मिलता है साउथ इंडिया में अभी तक बज रही है तावील
1: जी,
2: और एक शब्द है तबल मतलब टेबल, जिससे जिसका मीनिंग है फ्लैट सरफेस
1: जी हाँ,
2: अब ये तीन जो सोर्स मिल रहा है इसमें से कुछ अगर मिले पता चले तो
1: ठीक है,
2: मगर अब तक नहीं मिला सही, अब तक नहीं मिला।
1: अच्छा, आपके ख्याल से कुल घराने कितने हैं, आप कितने घराने मानते हैं, क्योंकि आपने इसमें बड़ा परिश्रम किया है, आप इस काम को जानते हैं, आपके ख्याल से घराने कितने हैं?
2: के दिल्ली से पहला इसका खास यानी सोफिस्टिकेसी इसका खासियत वहाँ से शुरू हुआ, बाद में ये लखनऊ, फिर वहाँ से गया फरुखाबाद
1: जी,
2: और दिल्ली से एक बाइफर्केट हुआ जिसको कहते हैं अजराड़ा
1: जी हाँ,
2: ये चार खानदान खास
1: जी
2: इस पर ज्यादा रिसर्च किया और ज्यादा कंपोजिशन ज्यादा इन लोगों से ही मिल रहा है
1: जी हाँ। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले तबला पंजाब में आया,
2: ये नहीं, मैं तो
1: इसके बारे में
2: मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ दिल्ली से ही शुरू हुआ,
1: दिल्ली से शुरू हुआ
2: वहाँ से ही।
1: तो इन घरानों में फर्क क्या है जी?
2: फर्क है बाज में
1: जी, यानी कुछ बोलों का फर्क,
2: बोलों का भी फर्क है, बंदिशों का फर्क है
1: जी हाँ,
2: इसका जो कॉन्सेप्ट उसमें यानी इसका जो तखायुल वो भी अलग है, एक एक का एक एक अलग है, एक एक घर खानदान का अलग है, तो ये खानदान एक एक डेवलप किया बहुत वर्षों का ऊपर से, बहुत लोग आए कंपोज किया बजाया सुधारा, यूं करते करते एक एक एस्टेब्लिश हुआ बड़े बड़े खानदान जैसा कि दिल्ली अजराला लखनऊ फरुखाबाद
1: जी हाँ। अच्छा, वैसे अपने यहाँ भी जैसे 12 खड़ी हैं अल्फाबेट्स हैं, तो वैसे तबले के भी कुछ अल्फाबेट्स हैं जी
2: हाँ,
1: जो दाएं से निकलते

0: कुछ बाएं से निकलते हैं,
1: हाँ।
0: फिर दोनों हाथ से मिलकर निकलते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जैसे ना और ता, ती और ती, ये कौन से, ये दाएं से निकलते हैं?
1: जी, ये तबला और बायां,
0: जी हाँ,
1: दोनों मिला के हम लोग तबला कहते हैं,
0: जी हाँ,
1: एक साथ में है। हालांकि बायां या तो डग्गा और तबला,
0: जी हाँ,
1: और डग्गा में दो ही खास बोल है,
0: गत,
1: कत,
0: घे,
1: घे,
0: जी हाँ,
1: और यूं ही डायना में
0: जी
1: खास पांच शब्द है, सिलेबल, एक ना, एक ता, एक तू, एक तित,
0: ना,
1: ना,
0: ता,
1: ता,
0: हाँ, तू,
1: तू,
0: हाँ,
1: तित,
0: ती,
1: और थे,
0: और
1: थे,
0: थे,
1: मतलब जिसमें से धड़धड़ करता हुआ,
0: जी हाँ,
1: ये पांच हुआ,
0: हाँ, ये तो
1: पांच और दो मिलके सात हुआ, ये सात को मॉड्यूलेशन करके, वेरिएशन करके, टोटल जितना इस्तेमाल हुआ होता है तबले में, 22 मिलके है, जैसा आपने स्केल में है 22 श्रुति और सात स्वर, यूं ही तबले में है सात बोल खास और 22 इसका वेरिएशन, और दोनों हाथ मिला के तो
0: कई ज्यादा बहुत ज्यादा बदला दीजिए,
1: जैसे ना और घे मिला के धा हो जाता है, ना और घे दोनों मिलाया तो धा हो जाता है,
0: जी हां, ये धा है,
1: हाँ जी,
0: जी हाँ,
1: ऐसा ही,
0: और क और के,
1: क और के,
0: जी,
1: उसमें है,
0: जी,
1: ऐसा है, का,
0: का,
1: के,
0: जी हाँ,
1: और ये
0: ग, ग और ग एक ही है,
1: नहीं जी, ग तो घे और घे ग है,
0: हाँ, अच्छा, घे और घे एक है,
1: करीब करीब
0: है, जी है, जैसे हम दींग कहते हैं, दींग दींग तकिट तकिट, तो ये ग जो है,
1: नहीं, ये दिंग दिंग ग नहीं है इसमें, असली में कहने के लिए ग उच्चारण करते हैं, मगर दिंग वो है, दिंग,
0: अच्छा,
1: दिंग, दिंग,
0: निखिल बाबू, जिस घराने के आप शागिर्द हैं, उस घराने का एक नमूना फरक्काबादी गत जरा सुनाइए,
1: जरूर।

0: निखिल बाबू, मेरी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ आना और पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: संगीत सरिता में आज आपने सुनी विविध भारती के खजाने से चुनकर लाई गई बातचीत। सुविख्यात तबला वादक निखिल घोष से बातचीत कर रहे थे प्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खान। मित्रों, आइए अब सुनते हैं निखिल घोष की बजाई हुई तबले पर पंचम।

तबले पर ताल पंचम सवारी हम सुन रहे थे। वादक थे निखिल घोष। आज संगीत सरिता में हमने पहले सुनी निखिल घोष से अब्दुल हलीम जाफर खां की बातचीत और बाद में निखिल घोष का तबला वादन। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

साथियों, सिपाही कांशीराम का जन्म तत्कालीन अविभाजित पंजाब के मंडी जिले के दुहान गांव में हुआ था, जो देश के उत्तर पश्चिमी भाग का सौंदर्य है, जिसकी सीमाएं भारत से अलग हुए मुल्क से लगती हैं। 1947 के उपरांत बरतानवी भारत के पंजाब प्रांत को बहावलपुर राज्य से जोड़ा गया। सतलज, रावी, ब्यास, चनाब और झेलम से जुड़ा कछार का कुछ इलाका एक ऐसी जगह जहां फिजाओं में गुरबानी की निर्मल मिठास घुलती रहती है। अध्यात्म की दृष्टि से ये बेहद पावन स्थल भी माना जाता है, लेकिन प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में आज भी इस क्षेत्र का सामरिक महत्व कहीं ज्यादा है। तो यकीनन इस क्षेत्र ने प्राचीन काल से ही इतनी जंगें लड़ी हैं कि किस तरह भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को महफूज किया जा सके, जिससे दुश्मन के इस रास्ते भारत में दाखिल होने का सिलसिला थम जाए, ये भी कई बार सोचा गया। जांबाज सिपाहियों और देश के निगहबानों की ये धरती, जिसने समय समय पर ऐसे फर्मा बरदार बेटों को माँ भारती को दिया, जिनके नाम के खौफ से ही दुश्मन का गला सूख जाता है। इसी मिट्टी के सपूत कांशीराम, जिनके पिता नरोत्तम राम भी सैनिक रह चुके थे, तो एक सिपाही की सरपरस्ती और शिक्षा दीक्षा के बीच कांशीराम की परवरिश हुई। बड़े होने पर वही रोब, वही रुतबा और वही शान जो उनके पिता में थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई को पूरी कर सेना में ही जाने का मन बना चुके कांशीराम ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया और मंजिलें तय होती चली गईं। उनके माता पिता और खुद कांशीराम का सपना सच हुआ और वो देश के विभाजन के बाद भारतीय ब्रिटिश सेना से इंडियन आर्मी का रुख करते हुए 18 जनवरी 1958 को पंजाब रेजिमेंट की 9वीं बटालियन में शामिल हुए। उनकी काबिलियत को भारतीय सेना में परखा गया और कई मोर्चों पर उन्हें तैनात भी किया गया, जहां उनकी अगुवाई में उनकी सैनिक टुकड़ी ने फतह पाई। दुश्मनों से टकराने, उनसे लोहा लेने का सिपाही कांशीराम का फन निराला था।

विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के।

विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सिपाही कांशीराम की शौर्य गाथा। सन 1962 में भारत के सुदूर पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की सरहदों की सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बेहद संवेदनशील हो चला था। उगते सूरज की भूमि कहलाने वाले अरुणाचल प्रदेश, जिसके दक्षिण में असम और नागालैंड की सीमाएं, पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर पूर्व में मैकमोहन रेखा पर भारत की एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे बड़े संवेदनशील क्षेत्र, जिस पर शत्रुओं ने हमेशा ही टेढ़ी निगाह रखी। सन 1947 देश के लिए आजादी का पैगाम लाया। इससे पहले देश को खोखला करती बर्तानिया हुकूमत के चर्चे दुश्मनों की गली में आम थे, लिहाजा भारत से सटी उत्तर पश्चिमी सीमाओं के साथ उत्तर पूर्वी सीमाओं पर भी गिद्धों की तरह मंडराते दुश्मनों को समझा जा सकता था। और पाने और खाने से न परहेज न गुरेज। एक तरफ स्वतंत्रता और खुशियों की लहर और दूसरी तरफ सरहद पर हलचलें तेज थी। दुश्मनों के घुसपैठ का सिलसिला थमने का नाम न लेता, लिहाजा कई बार उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी मैकमोहन रेखा, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC भी कहा जाता है, जो भूटान से होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है और तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है, जिसका उत्तरी पूर्वी LAC और सटे इलाकों पर शत्रुओं द्वारा खुलेआम उल्लंघन होता रहा। बार बार दुश्मन इस रेखा के आसपास चहलकदमी करता, आगे बढ़ता और फिर मुंह की खाकर लौट जाता। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खतरे के बादलों को मंडराते भारतीय सैनिक भी देख रहे थे और समझ भी रहे थे। इसी के मद्देनजर इन सीमाओं पर भारतीय सैनिकों की गश्त बढ़ा दी गई। फिर भी सीमांत अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में दबी आग सुलगती ही रही और सन 1962 के शोलों में तब्दील हो गई। सितंबर अक्टूबर महीने में अरुणाचल प्रदेश की कई सीमांत चौकियों पर दुश्मनों ने धावा बोला, जिसमें थांगला से होते हुए ढोला चौकी, नमकाचू नदी के दोनों किनारे, बमला पास, वालोंग और किबीथू सेक्टर इत्यादि थे। लेकिन इस जंग ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि दुश्मन की भारी तादाद भी भारतीय सैनिकों के हौसले पस्त करने में नाकाम थी। ये कुछ ऐसा ही था कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है।

यकीनन भारत की पूर्वी सीमा यानी अरुणाचल प्रदेश, जहां 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ी चोटियां और नमक का रेगिस्तान है, यही स्थान इस युद्ध का गवाह बना, जहां पंचशील के सिद्धांतों, संधियों, सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों और भाई भाई के नारे की आड़ में खुले आम नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। सन 1954, 1959 और सन 1960 की वार्ता, उनके नियमों को ताक पर रखकर सन 1962 की जंग को अंजाम दिया गया। इसी साल के शुरुआती महीने से ही दुश्मनों ने झड़पें तेज कर दी। पत्थरों और धारदार हथियारों से एलएसी के सभी नियमों को तोड़ते हुए नियंत्रण रेखा को पार करते हुए हमले तेज कर दिए गए। अक्टूबर सन 1962 को दुश्मन ने सोची समझी चाल के तहत हर तरफ से हमले शुरू किए। भारतीय सैनिकों को मोर्चे पर तुरंत तैनाती और रवानगी के आदेश हुए। यकायक हुए इस हमले में दुश्मन ने ऑटोमेटिक हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया, जिसके मुकाबले परतंत्रता की बेड़ी से उभरे भारतीय सैनिकों के पास हथियार कम आधुनिक थे। हजारों फीट की ऊंचाई पर मौसम की मार, लेकिन ऐसी जंगों से दो चार हो चुके भारतीय सैनिकों के हौसलों की परवाज बुलंद थी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
4: विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सिपाही कांशीराम की शौर्य गाथा। इस जंग के मद्देनजर फौलाद का सीना रखने वाले, दुश्मन की आंख में आंख डालकर उन्हें शिकस्त देने वाले भारतीय सेना के हुनरमंद सिपाही सिपाही कांशीराम की तैनाती नेफा में सिंह जोंग की चौकी पर की गई। जंगी हवा के रुख को कांशीराम भी भाप चुके थे। अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ अपनी पोस्ट पर 24 घंटे सतर्क थे। उन्हें अंदेशा था कि हमला कभी भी किसी भी छोर से हो सकता है। यकायक 10 अक्टूबर सन 1962 की सुबह लगभग 500 दुश्मन सैनिकों ने इस चौकी पर तेज रफ्तार हमला शुरू किया। मुहैया असलाहों, राइफल और ग्रेनेड्स के साथ सिपाही कांशीराम दुश्मन की जानिब बढ़े। बंकर नुमा इस पोस्ट पर कुछ भारतीय सैनिकों को मोर्चे पर तैनात पहले से ही कर दिया गया था। आधुनिक हथियारों से लैस शत्रु सैनिकों ने भारी तादाद में गोलाबारी शुरू की। इधर कांशीराम अपने सैनिकों के साथ हमलावर थे। आगे बढ़ते सैनिकों को अपना निशाना बनाते हुए अपनी लाइट मशीन गन का मुंह शत्रुओं पर खोल दिया। अपनी जान की बाजी लगाते हुए बेखौफ आगे बढ़ते रहे। कम से कम भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचे, ये कश्मकश भी थी और चुनौतियां भी। इसके साथ ही अग्रिम चौकी को भी महफूज रखने का जिम्मा, कुछ ऐसा बंदोबस्त, कुछ ऐसा चक्रव्यूह कि दुश्मन इस घेराबंदी से निकल ही ना पाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के साथ दुश्मनों पर निशाना साधते गए सिपाही कांशीराम और कई दुश्मन सैनिकों को मौत की घाट उतारा। इस जंग में कुछ भारतीय सैनिकों का साथ छूटा जिन्होंने मौत को गले लगाया लेकिन दुश्मन को पीठ न दिखाई। कांशीराम अपनी चौकी के रास्ते को प्रभावी ढंग से कवर करते हुए शत्रुओं को आगे बढ़कर निशाना बनाते हुए कभी जख्म सीने पर खाते रहे तो कभी शत्रुओं पर भारी पड़ जाते। दुश्मन आगे बढ़ता तो लेकिन उनकी पैनी निगाह पड़ जाती, उसे वहीं ढेर कर बड़ी फुर्ती और चतुराई से अगले मोर्चे पर डट जाते। शत्रु ने अपने ही सैनिकों को तिनकों की तरह बिखरे देखा। इस बीच सिपाही कांशीराम भी बुरी तरह जख्मी हुए। इस तेज रफ्तार जवाबी कार्रवाई से दुश्मन बौखला गया और जंग के मोर्चे पर अपने पैर उखड़ते देख शत्रु सैनिकों ने पीछे हटना ही मुनासिब समझा और इस चौकी से भाग खड़ा हुआ।

सिपाही कांशीराम के कंपनी कमांडर ने जब उन्हें बेहद घायल अवस्था में देखा तो उन्हें मोर्चे से हटने और उपचार के लिए सेना के कैंप वापस जाने की सलाह दी। चोटें गंभीर थीं, खून का रिसाव लगातार हो रहा था, लेकिन कांशीराम मोर्चे से हटने को तैयार न थे। उन्होंने अपने घावों पर कस के पट्टी बांधी और अगले ही पल मोर्चे पर डट गए। उन्हें यकीन था कि शत्रु दबे पांव फिर से हमला किसी भी वक्त कर सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। अंदेशा बिल्कुल सही निकला। दुश्मन की एक और लहर ने चौकी पर हमला किया। हमला इस बार पहले के मुकाबले कहीं तीव्र था। एक तरफ ऑटोमेटिक राइफल्स और ग्रेनेड्स से हमले हुए और दूसरी तरफ पत्थरों और धारदार हथियारों से भी हमारे फौजी साथियों पर हमले होते रहे। कई भारतीय सैनिक घायल हुए और कईयों ने वतन की आन में अपनी जान निसार कर दी। सिपाही कांशीराम हथगोले फेंकते हुए, शत्रुओं में भगदड़ मचाते हुए, रास्ता खाली करते हुए उन्होंने कईयों को अपना निशाना बनाया। कुछ की स्वचालित राइफल को अपने कब्जे में लेते हुए उन पर ही हमला करते हुए 30 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को उनके ही हथियारों से निशाना बनाया। लेकिन भारी तादाद में हर तरफ से होते हमले और इधर सिपाही कांशीराम की जवाबी कार्रवाई में हलाक होते दुश्मन सैनिकों के बीच मची भगदड़ में भारतीय जवानों के साथ इस हमले को कांशीराम संभालते रहे और पीछे न हटे। बुरी तरह घायल होने के बाद भी दुश्मनों से टक्कर लेते रहे। इस बीच शत्रु सैनिकों का एक कमांडर आगे का रुख करते हुए पत्थरों के पीछे से आड़ लेता हुआ चिल्लाया, हथियार डालो, आत्मसमर्पण करो। सिपाही कांशीराम मौके की नजाकत को समझ रहे थे कि मरना या मारना, इसके बीच का रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। वो तेजी से खाई से बाहर की तरफ निकले और उनके कमांडर की तरफ एक शेर की मानिंद झपटे, उसे आंखों में आंख डालकर पटकनी दी, अपनी संगीन से घायल करते हुए अपने शत्रु को चेतावनी दी कि हिंदुस्तानी सिपाही कभी हथियार नहीं डालता, आखिरी सांस तक आत्मसमर्पण नहीं करता। और घायल अवस्था में भी सिपाही कांशीराम पीछे न हटे। मैदान जंग में शत्रुओं के दांत खट्टे किए, गजब का आत्मविश्वास जिसने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए।

साथियों, ये युद्ध भारतीय इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिसमें कई मोर्चों पर दुश्मनों ने शिकस्त खाई। उनकी फौज की तादाद भले ही ज्यादा थी, असलाहे भले ही आधुनिक थे, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला उनके पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। जख्म सीने पर खाए, लेकिन शत्रु को पीठ न दिखाई। उनकी हर तरकीब का मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मनों की जानिब उठे कदम को पीछे न हटने दिया। छल बल, हथियारों और दुश्मन के टिड्डी दल की तरह बढ़ते सैनिक भारतीय जांबाज सिपाहियों के हौसले के आगे कुछ भी नहीं थे। इस असाधारण जंग में सिपाही कांशीराम ने सिद्ध कर दिया कि हम एक बार फिर इस असाधारण जंग में सिपाही कांशीराम ने ये सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय सिपाही 100 दुश्मनों पर भी भारी है। और तस्वीर कुछ ऐसी रही, फिर दुश्मनों को इस पोस्ट से पीछे हटना ही पड़ा। हम सिपाही कांशीराम को एक बार फिर से सलाम करते हैं।

साथियों, 10 अक्टूबर सन 1962 को नेफा के सेंगजोंग की चौकी पर भारी तादाद में दुश्मन सैनिकों के हमले का बहादुरी से सामना करने, इस चौकी को महफूज रखने, यहां से शत्रुओं को पीछे खदेड़ने, दुश्मन की सभी चालों को शिकस्त देने, अदम्य साहस, गजब का सैन्य संचालन, कर्तव्य परायणता, अद्वितीय रणकौशल और वीरता के लिए पंजाब रेजिमेंट के कर्मवीर सिपाही कांशीराम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी भारतीय सेना के शेरदिल जवान सिपाही कांशीराम की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादा,

0: ये भाई भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सबसे पहले सुनते हैं छोटी सी बात के इस गीत की धुन को। माउथ ऑर्गन पर हैं मिलन गुप्ता।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म छोटी सी बात से, आवाज़ें यशोदास और आशा भोसले की, गीत के बोल योगेश के और संगीत सलील चौधरी का।

हवा महल में आज हास्य नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं उलाहना, लेखक इंद्रचंद तिवारी बॉडम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका उलाहना।

0: हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को, और छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को।
1: किस कमबख्त ने साथ छोड़ दिया, मैं भी तो सुनूं। अरे वो कौन करम जली है, हे भगवान मेरे तो करम फूट गए।
2: अरे करम तुम्हारे नहीं रंजना मैडम, करम तो मेरे फूटे हैं, तुम जैसी
1: चुड़ैल पाकर। अरे जब मुफ्त में दूध उड़ाने को मिल रहा है तो खूंटे पर गाय क्यों बांध रही?
2: अरे गाय वो भी मरखनी, आगे से सींगे मारे
1: पीछे से दुलकती झाड़े, क्यों है ना?
2: ओहो तुम तो यार झाड़ू लेकर पीछे पड़ गई। अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था, अब तुम जैसी सीधी सरल सरपट सरसराती
1: थोड़ी ना मिली होती।
2: ओहो सुना नहीं, खूबसूरत गाय मुझको ना मिली होती तो भला ये इतने खूबसूरत बछड़े कहाँ से आते?
3: पापा गाय के बजाय आप भैंस क्यों नहीं लाए? भैंस तो गाय से ज्यादा दूध देती है।
1: क्या कहा, वो मीठू तेरे का, ये मुझको भैंस कहता है?
3: मेरा कान छोड़िए, मैं तो पापा की बात कह रहा हूँ, वही तो आपको गाय बना रहे थे।
1: हाँ हाँ तुम बाप बेटे मुझको गाय बनाओ, भैंस बनाओ,
3: और चाहे बकरी बनाओ।
2: वंडरफुल वंडरफुल।
1: बस आपकी इन्हीं बातों से लड़के बिगड़ रहे हैं, ये सब आपकी शेफ आकर शेर हो रहे हैं। अभी परसों ही रीना की माँ बबलू की और इंजीनियर साहब की बीवी बंटी की शिकायत लेकर आई थी।
2: अरे भाई क्या शिकायत लेकर आई थी, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: शिकायत क्या, बंटी ने रीना का बछड़ा खूंटे से खोल दिया और वो सारा दूध पी गया।
2: देखो रंजना अब फिर तुम्हारी तरफ से गाय का नाम आया।
3: तो पापा अब मैं भैंस का नाम लूं?
1: अभी बताती हूँ तुझको, अभी बताती हूँ, तेरी जबान हाथ भर की हो रही है।
3: पापा क्या किसी की जबान हाथ भर की भी होती है?
1: चल भाग यहाँ से।

0: अरे किसने मारा तुमको सोमू?
1: अंकल बंटी ने मारा।
0: क्यों, क्या बात हो गई थी?

0: अरे
1: अच्छा मैंने ये कहा था, तुमने ये कहा था।
2: चल जा झूठे कहीं के,
1: तुम झूठ बोल रहे हो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आपस में लड़ते नहीं है, बुरी बात है, जाओ बेटा जाओ। हाँ

0: गर्दन ज्यो मजनू कचकारा तुझे देखकर ए बेडंगी ऐसा लगता है। अरे अब मैं तुमको थोड़े ही कह रहा था, मैं तो
1: हाँ हाँ दीवारों को कह रहा था, तुम्हारी इन्हीं बातों को सीखकर लड़के बिगड़ रहे हैं।
0: चलो भाई ठीक है, हमारी वजह से बिगड़ रहे हैं, तुम कुछ ऐसी वजह पैदा करो जिससे लड़के सुधर सके। कोयल सा है रंग तुम्हारा, गर्दन ज्यो मजनू कचकारा।

0: हाँ हाँ हाँ हाँ अरे ये क्या कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो?
1: पापा बंटी ने मुझे बिजली की तार से मारा।
0: क्यों बंटी, ये दिन भर लड़ाई झगड़ा क्यों करते रहते हो?
2: बड़े पापा बनकर आए हैं अपने बेटे का पक्ष लेने। जैसे सोमू बड़ा सीधा है, बेचारा कुछ नहीं जानता। पहले अपने लड़के को समझाइए, फिर मुझे कहिएगा।
0: खामोश, जरा सा है, इतनी सपासप जवान चलती है जैसे कतरनी।
2: ए, ए, ए, ए, ए, ए।
0: अच्छा देखो मैं तुझे बताता हूँ, कान उखाड़ कर उमेश कर रख देता हूँ हाथ में।
1: आपने मुझे मारा।

0: अरे क्या हुआ बंटी, क्यों रो रहा है, क्या बात हुई?
1: मुझको सोमू के पापा ने चार चार चाटे मारे, मुझको मारे।
0: क्या? लेकिन बेटा बात क्या हुई? अच्छा ठहरो, मैं अभी चलता हूँ। अरे शर्म नहीं आती इतनी छोटे बच्चे को मारते हुए? अरे उलझना है तो किसी बराबर वाले से उलझे, तब समझ में आए। दो मिनट में आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। छोटे बच्चे को मारना कौन सी बहादुरी काम है? दिन में सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। आओ चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ।
2: हाँ हाँ अब तो देखोगे ही, अपने लाडले को कुछ कहोगे नहीं, उसको उल्टी सीधी बातें सिखाकर शेर बनाओगे, और अब चले हो मोहल्ले में दूसरों से उलझने।
0: देखो रंजना, तुम हर बात पे अपनी टांग मत फसाया करो, हर वक्त कबाब में हड्डी मत बना करो, हर चीज में अपनी श्रीमुख को मत घुसेड़ा करो।
2: अरे मेरी समझ में नहीं आता कैसे पिता हो तुम।
0: खैर तुम अपना काम करो, मैं तुमसे इस समय बहस नहीं करना चाहता।

0: कौन है?
1: मैं हूं जनाब। मिस्टर, आपका ही नाम राजन है?
0: आइए आइए, कहिए क्या बात है। मेरा ही नाम राजन है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
1: ये नाम तो मेरे ससुर का भी है।
0: और हुजूर आपकी तारीफ?
1: जी, मुझको अशोक कहते हैं।
0: ओह, ये नाम तो मेरे साले का है।
1: अच्छा, तो आप मुझको अपना साला बना रहे हैं?
0: ओह, और आप मुझे अपना ससुर बना रहे हैं?
1: जी हाँ, हर बात की पहल तो हमारी तरफ से होती है। हर चीज की पहल मैं और मेरा लड़का ही करता है। बस दुनिया में यदि कोई नया प्राणी है तो वो है आप और आपका लाडला।
0: आइए आइए, अंदर ही निकल आइए, जरा मिजाज को ठंडा कीजिए, चढ़े हुए पारे की डिग्री थोड़ा नीचे तो उतारिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊं।
1: हाँ हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा पारा चढ़ गया है, मैं पागल कुत्ता हो गया हूँ, बिना मतलब भूखने और काटने लगा हूँ। एक आप ही इस कॉलोनी में भले और शरीफ आदमी है।
0: भाई साहब, आप तो औरतों की तरह झगड़ रहे हैं।
1: जी हाँ, मुझको औरत बनाइए, झगड़ालू बनाइए, अरे बनाना है साला बनाइए, चाहे जो मर्जी आप बनाइए।
0: मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आप खुद में खुद अपने मुंह से बनते जा रहे हैं।
1: जी हाँ, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ ना कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। खैर, और बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने बच्चे को

0: मारा क्यों? आज आपसे मुझको इस बात का निपटारा करना है। आप अपने को समझते क्या हैं? इंजीनियर होंगे तो आप अपने घर के होंगे, और पैसे वाले होंगे तो अपने घर के होंगे, रिश्वती ये कहीं के।
1: मिस्टर असो, जबान को लगाम दीजिए, होश में रहिए। आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जबान को लगाम नहीं, जो चाहा बक डाला। दो मिनट में आपका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। इतनी देर से टालता चला जा रहा हूं और आप हैं कि भीगे बांध जैसे ऐंठते ही जा रहे हैं। मुझको अपना ससुर, रिश्वतिया और न जाने क्या क्या बना डाला। आपसे अधिक समझदार तो मुझको आपकी पत्नी मालूम होती है। बच्चों के इन छोटे छोटे झगड़ों में औरतों को लड़ना चाहिए, पर मैं देख रहा हूं वे बेचारी मुफ्त में बदनाम है और आप इनकी भी सीमाएं पार करते जा रहे हैं। इस सड़ियल झगड़े को लेकर तिल का तार बनाते जा रहे हैं।
0: तो इसका मतलब आप मेरी बीवी तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं? खबरदार जो उसके बारे में कुछ कहा
1: तो मैंने कौन सा आप शब्द कह दिए उनको?
0: जी आप कौन होते हैं मेरी बीवी के गुण अवगुण बखान करने वाले?
1: अरे बेहतर होता कि आपकी पत्नी आपकी मिसेज होने के बजाय आपकी माँ होती।
0: क्या क्या क्या कहा आपने? मेरी बीवी मेरी माँ होती? मालूम होता है आपका दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हुआ है। कम से कम आपकी पत्नी आपकी माँ होती तो कुछ तो अच्छे गुण आ गए होते।
0: मैं पूछता हूँ कि आपको अभी इस मोहल्ले में आए हुए जुम्मे 4 दिन हुए हैं और आपने मेरी पत्नी के विषय में इतनी डिटेल्स कलेक्ट कर ली? मुझे आप अच्छे आदमी नजर नहीं आते।
2: अरे मैं कहती हूँ चलिए घर वापस चलिए।
0: अरे छोड़ो यार,
2: दे चुके उलाहना, हो गया बस हो गया।
0: मैं पूछता हूँ तुम यहाँ कैसे आई?
2: क्यों, मेरे यहाँ आने से कौन सा आकाश फट गया? क्या गजब हो गया?
0: नहीं रंजना नहीं, तुम नहीं जानती मुझे मिस्टर राजन अच्छे आदमी नहीं लगते।
2: समझी, तो अब लड़का छोड़कर मुझ पर प्यास कटने लगा। आइए चलिए घर वापस चलिए।
1: आइए भाभी जी अंदर आकर बैठिए ना।
2: अरे नहीं भाई साहब, ठीक है अब चलिए चलिए।
3: अरे आइए भी, ऐसे भी क्या नाराजगी है। अशोक भैया आप भी बैठिए ना।
0: बस रहने दीजिए भाभी जी।
3: अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए फिर इतना बिगड़िए। देखिए दिन भर ये बच्चे आपस में खेलते कूदते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनसे नुकसान भी हो जाता है। आज बात की बात पर मुझे बात कहनी पड़ रही है। उस दिन सोमू और बंटी लकड़ी की गेंद से छत पर खेल रहे थे, मेरे सामने ही बंटी के गेंद फेंकने पर मेरा 2 किलो का मर्तमान तड़ से टूट गया, सारा आचार बिखर गया। पर क्या मैं उसकी शिकायत लेकर आपके पास आई? अरे बंटी के बजाय सोमू की गेंद से भी तो अचारदानी टूट सकती थी, लेकिन छोटे बच्चों को बड़े के मुंह नहीं लगना चाहिए।
0: क्या मुंह लगा था बंटी आपके मिस्टर राजन के?
3: अरे भैया पहले बंटी ने सोमू को बिजली के तार से मारा, देखिए उसके बदन में कैसे नीले नीले निशान पड़ गए हैं, फिर उनके डांटे पर तड़ातड़ जबान लड़ाने लगा, इनको मुंह चढ़ाने लगा, इस पर इन्होंने उसको 2-3 चांटे लगा दिए। अरे इसमें कौन सा गुनाह हो गया? बंटी आपके साथ साथ मेरा भी तो बच्चा है, मैं तो बंटी और सोमू में कोई भेद नहीं समझती। अगर मेरा सोमू ऐसा करे तो फौरन उसके कान गरम कर दीजिए, मुझे जरा भी एतराज ना होगा।
2: बहन यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, बच्चों की गलती पर कोई भी बड़ा बूढ़ा उनको अच्छे रास्ते पर लगाने के लिए यदि डांटता डपटता है तो इसमें माता पिता को बुरा नहीं मानना चाहिए, उलाहना नहीं देना चाहिए। और बहन हम लोगों के बचपन में तो मोहल्ले के किसी भी बड़े बूढ़े के सामने हम लोग जबान ही नहीं खोल सकते थे, और गलती करने पर अपने से बड़ा व्यक्ति किसी भी बच्चे के फौरन कान गरम कर देता था। और क्या मजाल कि माँ बाप उस व्यक्ति के पास बच्चे के संबंध में उलाना लेकर जाएं।
3: लेकिन बहन अब तो जरा जरा सी बात पर सिर फुटावल शुरू हो जाती है।
2: यही बात तो मैं इनसे बराबर समझाती हूँ कि बच्चे खेलेंगे भी लड़ेंगे भी और गलती भी करेंगे, इस पर अगर कोई डांट फटकार कर देता है मार भी देता है तो क्या हुआ, ये सब तो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है।
1: कहिए मिस्टर अशोक, मैंने क्या गलत कहा था कि भाभी जी को आपकी पत्नी होने के बजाय
0: आपकी माँ होना चाहिए?
1: जी नहीं आपकी।
0: जी नहीं आपकी।
1: आपकी
0: आपकी
1: आपकी, आपकी, आपकी, आपकी, आपकी, आपकी।

उलाहना, ये हास्य नाटिका अभी आप सुन रहे थे। लेखक इंद्रचंद तिवारी, बॉडम लखनवी, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, आवाज़ें खान साहब और शाश्वत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाश्वत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. प्रधानमंत्र्यांनी मिर्झिओ एव यांच्यासोबत अध्यक्षांच्या निवासस्थानी वृक्षारोपणही केलं. प्रधानमंत्र्यांनी माजी प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांच्या ताशकंद इथल्या स्मारकालाही भेट दिली आणि शास्त्री यांना आदरांजली वाहिली. दरम्यान आपला उझबेकिस्तान दौरा आटोपून प्रधानमंत्री ताशकंदहून किर्गिस्तानला रवाना झाले आहेत. तिथे ते 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या 26व्या शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. या राष्ट्रीय बातम्या आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून देत आहोत. आकाशवाणी मुंबईच्या एअर न्यूज मुंबई या इंस्टाग्राम पेजवर तुम्हाला दिवसभर महत्त्वाच्या बातम्या वाचता येतील. राष्ट्रीय बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. वेगळं मत मांडणाऱ्या किंवा प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दंडात्मक कारवाईचा धाक दाखवणं हे घटनाबाह्य आणि अधिकाराचा गैरवापर करणारं आहे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान यांनी आज मांडलं. दिल्लीच्या राष्ट्रीय विधी महाविद्यालयाच्या 13व्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. विद्यापीठांमध्ये प्रस्थापित पदांची चिकित्सा व्हायला हवी, त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित व्हायला हवेत आणि मतभेदांची परिणती वैमनस्यात होता कामा नये असंही ते म्हणाले. देशाची सॉफ्ट पॉवर, जागतिक पातळीवरचं स्थान आणि द्वितीय पक्षी संबंधांना चालना देण्यासाठी विविध देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाची भूमिका प्रशंसनीय आहे असं प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केलं. अमेरिका दौऱ्यादरम्यान शिकागो इथल्या भारतीय समुदायाला त्या संबोधित करत होत्या. फक्त एक मोठी बाजारपेठ म्हणून नव्हे तर स्वायत्त संरक्षण व्यवस्था विकसित करणं, त्यांची चाचणी घेणं आणि त्यांचं उत्पादन करणं, त्यांच्या तांत्रिक क्षमतांचा फायदा करून घेणं, कुशल मनुष्यबळ आणि वाढत्या नवोन्मेष व्यवस्थेला ग्लोबल हब म्हणून भारत उभा राहत आहे असंही त्या म्हणाल्या. शिकागोतल्या निवडक कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रतिनिधींशी त्यांनी बैठका घेतल्या. महिलांच्या आशिया चषक T20 क्रिकेट स्पर्धेत थायलंड विरुद्धच्या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली. थायलंडनं नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला. शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा थायलंडच्या 10 षटकात 2 बाद 101 धावा झाल्या होत्या. शफाली वर्मानं अर्धशतकी खेळी केली आणि ती खेळपट्टीवर टिकून आहे. नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 781 झाली आहे तर 2500 जास्त जण अद्याप बेपत्ता आहेत. यात 275 भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. सुमारे 9500 नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे. या दुर्घटनेचा फटका बसलेल्या 8 जिल्ह्यांमध्ये मदत आणि बचाव कार्य सुरू असून अजूनही मृतदेह बाहेर काढले जात आहेत. भोटेकोशी नदीला पूर येण्याची शक्यता लक्षात घेता नेपाळ सरकारनं 3 जिल्ह्यांमधल्या नदीलगतच्या भागातल्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. नेपाळमधल्या बचाव आणि मदत कार्यासाठी भारतातून 11 टन मदत सामग्री घेऊन 4थं विमान काठमांडूमध्ये दाखल झालं असून ही मदत सामग्री नेपाळ सरकारकडे सुपूर्द केल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्री Dr. S. Jayshankar यांनी दिली आहे. दरम्यान नेपाळमधल्या महापुरामुळे काठमांडू इथं अडकलेले नागपूरचे 102 यात्रेकरू आज सकाळी सुरक्षितपणे राज्यात परतले. भारताचा स्क्वॉशपटू अभय सिंग यानं मलेशियात झालेल्या PSA चॅलेंजर स्पर्धेचं जेतेपद पटकावलं आहे. अंतिम लढतीत त्यानं हाँगकाँगच्या हेनरी लेऊंग याच्यावर 5 गेम्समध्ये 11-7, 6-11, 3-11, 11-5, 12-10 अशी मात केली. नासानं आज फ्लोरिडा इथून नॅन्सी ग्रेस रोमन या अंतराळ दुर्बिणीचं फाल्कन रॉकेटवरून प्रक्षेपण केलं. आता ही दुर्बीण 3 महिन्यांपेक्षा जास्त प्रवास करून 16 लाख किलोमीटरवरच्या एका निरीक्षण बिंदूवर पोहोचेल. नासाच्या पहिल्या मुख्य खगोलशास्त्रज्ञ नॅन्सी ग्रेस रोमन यांच्या नावावरून या दुर्बिणीचं नाव ठेवण्यात आलं आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. अंमली पदार्थ मुक्त युवा ही मोहीम म्हणजे देशाच्या युवा वर्गाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीचा सामूहिक संकल्प असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं मन की बातमध्ये प्रतिपादन. भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातले संबंध सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या पातळीवर न्यायला दोन्ही देशांच्या नेत्यांची संमती. प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दंडात्मक कारवाईचा धाक दाखवणं हे घटनाबाह्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान यांचं प्रतिपादन. नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 781 275 भारतीयांसह 2500 जास्त जण अद्याप बेपत्ता आणि महिलांच्या आशिया चषक T20 स्पर्धेत थायलंड विरुद्धच्या सामन्यात भारताची चांगली सुरुवात. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.
1: युरेनियम आपूर्ती के लिए सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
2: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
2: PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में PM सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
5: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़।

0: आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकाल राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, आवाज़ें राघव चैतन्य और साथियों की थी। गीत के बोल मनोज मंतशिर के और संगीत प्रीतम का।

0: श्रोता, यह गीत आपने सुना फिल्म RRR से, आवाज़ें विशाल मिश्रा और राहुल सिपलीगंज की थी। गीत के बोल रिया मुखर्जी के और संगीत MM क्रीम का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, आवाज़ देव नेगी और पायल देव की थी। गीत के बोल वायु के और संगीत विशाल एन शेखर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म अतरंगी रे से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शाह तिरुपति की है। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
4: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
3: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
4: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैली

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक

0: है।
1: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

जैसे गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म, शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी। सब कुछ सी

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का ये

0: ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।
1: अरे तू

तड़पे मेरी जवानी, प्यार

0: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
1: अरे फैशन की

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी कहानी।

0: हमारी।
1: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले, हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
1: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
0: फिल्म जिद्दी।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी,
0: फिल्म अधिकार।
2: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
0: फिल्म औलाद।
2: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
0: फिल्म अमानत।
2: रहने को घर दो,
0: फिल्म बीवी और मकान।
2: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
0: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
3: देखो टर्मरिक